خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس

الشوق.

من الله من شيء ربنا

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. Farvard College of Education, Kharagpur में B.Ed. 1.5 साल और B.Ed. 2.5 साल जो दाखिलाओं शुरू थी वयूं आहिन जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वणायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीम शोबे सा लागा पिल केतरीन ई नौकरीन लाए B.Ed. डिग्री लाज़मी बनजी रही आहे तें करे अजु ई दाखला वठो पांजे टीचिंग करियर के मजबूत बुनियाद दियो सिंध जे कहीं भी शहर या जिले सा वास्तो हुजे तवां आसानी सा दाखला वठी सगो था असां वट मौजूद आहिन एयर कंडीशन क्लासरूम्स High speed Wi-Fi, تجربکار این senior faculty, معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تہن کرے اجوئی رابطو کریو آن لائن اپلائے لائے forwardcollege.pk ودیک جان لائے 0304-282-7274 آفیس ٹائم صبح 9 کھان شام 5 وگی تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سرویس جے سامو واپڑا کالونی خیرپور اجوئی داخلہ وٹھو پہنجے مستقبل کے محفوظ بنائیو این ہک کامیاب استاد بن ना पहरियो कदम वधायो खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100

फल खा सकता है उसका। अच्छा, हम अपने बच्चों से भी बहुत जल्दी मायूस हो जाते, ये अभी फरिश्ते नहीं बने, इन्होंने कुछ भी नहीं बनना, बस खत्म। नहीं, किसी की भी इस्लाह में बहुत सब्र की जरूरत होती, ठीक हो जाएगा। और जो खासतौर पर तबलीग के मामले में, ये नहीं कि एक दफा लोगों को बता के आप एक्सपेक्ट करें कि अब इसके बाद तो ये 100% फरिश्ते बन जाए। नहीं, इंसान है, गलतियां होंगी, ठोकरें खाएंगे, फिर संभल जाएंगे, फिर हर चीज का एक अंदाज, एक वक्त लगता है उसको बनने में। या मसलन मैं आप लोगों से अब ये तवक्को कर लूं कि आप जल्दी से बस लोगों को पढ़ा छोड़ें, चंद दिनों में ये सब कुछ फैला दें, नहीं, हर चीज का एक वक्त। फल आने में हमेशा देर लगती, क्यों? इसलिए कि अगर छोटे से पौधे पर फल लग जाए ना, तो उसको भी ले डूबे, उसको भी खत्म कर दे। और ऐसा ही होता है, जिसका तना मजबूत नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद जड़ मजबूत नहीं हुई, वो फल कैसे उठा सकता है अपने ऊपर। वक़द अहसन बी, और उसने मेरे साथ एहसान किया, अहसन बी इज अखरजनी, जब उसने निकाला था मुझको, मिनस सिजन कैद खाने से। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे गुज़श्ता वाकयात का एक जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए स्टाइल पिछली जिंदगी की कहानी सुनाने का, हम जब अपने गमों का जिक्र करते हैं तो क्या करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम देखिए क्या कर रहे हैं, हर चीज अल्लाह ताला के साथ। वक़द अहसन बी, अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला, ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया जब मुझे कैद खाने में डाला, एक अंदाज ये भी हो सकता था। हम क्या करते हैं, जो नेमत मिलती है उसका जिक्र ही नहीं फरमाते, और जो तकलीफ आती उसको नशर करते हैं। एक शख्स आपके साथ 100 भलाइयां करता है, आप कहीं मुंह नहीं खोलते कि अच्छा इंसान है, एक दफा डांट दे आपको, फिर देखें क्या होता है। हम इंसानों का ये हाल है और ये कमजोरी है। वो कहते हैं, वो कैद खाने जाने का जिक्र नहीं कर रहे कि बड़ा जुल्म हुआ मुझ पर जब मेरे साथ उन औरतों ने ये किया और मुझे वहां भिजवा दिया, मेरा कोई कसूर नहीं था फिर भी मुझे जेल भेज दिया। हर वक्त अपनी सफाइयां। वक़द अहसन बी इज अखरजनी मिन अस्सिजन वजा बिकुम मिन अलबदव, और ले आया तुमको जंगल से। अहसन बी, अब आप देखें हकीकत में तो उन पर एहसान हुआ है ना, आने वालों पर, कि उनको जंगल से उठा के अल्लाह ने एक महल में भेज दिया। लेकिन ये कहते हैं अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया जब मेरे रिश्तेदार मुझसे मिला दिए। क्या खूबसूरत अंदाज, कितनी पॉजिटिव सोच। ये भी कह सकते थे ना, देखो अल्लाह ने तुम पे एहसान किया कि यहां आ गए, किन हालात में तुम रहते थे। आप देखें कि कभी हम ऐसा करें कि जिंदगी में अल्लाह हमको बहुत कुछ दे, फिर हम अपने कुछ रिश्तेदारों, कुछ अजीजों, दोस्तों के लिए भलाई का सबब बने, उनकी खैरखाई का, हमारे जरिए उनके कुछ फायदे हो जाएं, तो हम क्या कहते हैं, मैंने तुम पर यह एहसान किया, मैंने तुमको नौकरी दिलवाई, मैंने तुमको कारोबार लगाया, मैंने तुम्हें घर बना के दिया। ये नहीं कहते अल्लाह का एहसान मुझ पर जिसने मुझे तौफीक दी कि मैं नेकी कर सकूं। ये दो मुख्तलिफ किरदार हैं, ये अखलाक के दो रुख हैं। एक तरीका इख्तियार करने वालों के लिए अजर ही अजर है, और दूसरा तरीका इख्तियार करने वालों का अजर भी जाया है, किया कराया भी जाया है। वक़द अहसन बी इज अखरजनी मिन अस्सिजन वजा बिकुम मिन अलबदव, तुमको जंगल से उठा लाया। मिन बाद अन नज़ग शैतानु बैनी व बैन इख्वती, इसके बाद के वसवसा डाला था शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। ये एक शैतानी अवाई मुझसे कर रहे थे, ये बड़े अच्छे इंसान हैं, बस शैतान ने फिसला लिया था। हम में से कितने ऐसी बात कहते कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, बस शैतान ने जरा सा इनको रास्ते से हटा दिया था, ऑफ द ट्रैक चले गए थे। हम तो क्या करते, किसी में कसूर ना भी हो तो ढूंढ ढांड के कहीं से डाल देते हैं ताकि वो कसूरवार नजर आए तो हम नेक नजर आ सके, वो बदनाम हो तो हम नेक नाम होंगे, उसे गिराएंगे तो हम ऊपर चढ़ेंगे।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

चमन सूर चढ़ा कर अते अनल हक अलेजा इश्क दी मेहर जात निराली।

Sakkar FM 88.

0: सम्झंदे पाण खे भाग वारो सम्झंदो
1: आहे।
0: जॾहिं महबूब जे हथ में काती ॾिसंदो आहे त हू नचण पुरण लॻंदो आहे। हीउ इश्क जी उहा मंज़िल आहे जिते इंसान पंहिंजो सभु कुझु क़ुर्बान करे ऐं नीह जा नारा हणंदो रहंदो आहे। पर साईं जा फ़ाइज़ अली खे ॿुधूं था त इश्क ऐं रिश्तनि जे हवाले सां कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे।

जी साइमन, साइमन जा प्रोग्राम रोशन सुबह में असां सवाल रखियो आहे ऐं तव्हांखे उमेद त इंतज़ारु हूंदो होसियड़ हूंदो त असांजो जेको सवालु कहिड़ो आहे, असांजो अॼु जो सवालु आहे त उहो कहिड़ो मेवो आहे जंहिंजो वणु नाहे थींदो न का वल थींदी आहे। जी हा, तमामु आसान सवालु आहे त उहो कहिड़ो मेवो आहे जंहिंजो वणु या वल नाहे थींदी। ऐं असां दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं, जेकॾहिं अव्हांखे सवाल जो सही जवाबु अचे पियो त असांजे एस एम एस ज़रिए सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। एस एम एस करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, उहो इहो आहे त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते एल आर के यानी लाड़काना एल आर के लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 888 ते। ऐं असांजो जी एफ एम 88 आई डी आहे फेसबुक जी, ऐं असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं जेके दोस्त फ़ोन कॉल ते ईंदा आहिनि ऐं रेगुलर कॉलर आहिनि त असांजी आन हूंदी मोबाइल 10 बजे खां बाद में स्टूडियो में, तव्हां कॉल करे बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु नोट कराए सघो था। असांजो नंबर तमामु आसान आहे 0332-1322-88। ऐं साईं मुंहिंजा ॿियो अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु के हिन दौर में जेको ॻाल्हि घणी हिकिड़ो हले पई या चर्चो हले पियो पेट्रोल जो, त पेट्रोल जेको ॾींहों ॾींहुं महांगो थींदो वञे पियो, त असांजे गवर्नमेंट जी पॉलिसी में वज़ीर आज़म जे इन रिलीफ में अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांखे रिलीफ तमामु सुठो मिलियो आहे। जेको अव्हां खे यकीन हिन वक़्तु जेको पेट्रोल पंपनि ते पैकेज ॾिनो वियो आहे त 100 रुपियो फी लीटर ते असांखे रियायत आहे। ऐं उन जो हिकिड़ो आसान तरीक़ो मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, तव्हांखे हर पेट्रोल पंप ते उन जो आसान तरीक़ो बि जेको वॾो बैनर लॻल आहे, पेना फ्लैक्स लॻल आहे, उहो बि तव्हांखे उतां बि सॼी मालूमात मिली वेंदी। पर मां बि अव्हांखे ज़रूरु मालूमात ॾींदुसि त जेके दोस्त पेट्रोल बाबति पंहिंजो मालूमात वठणु चाहिनि था त गौर सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। त असल में जेकॾहिं तव्हां मोबाइल में वेंदव, एस एम एस में वेंदव, उनजे राइट ऑप्शन में वेंदव त आर ई जी वॾी बेसीअ में तव्हां आर ई जी लिखंदव ऐं उन खां बाद में एन आई सी पंहिंजो स्पेस ॾींदव, स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजी जेका एन आई सी आहे उन जा तव्हां डिजिट हणंदव, उन खां बाद में तव्हां वरी स्पेस ॾींदव, तव्हां वरी एस लिखंदव, यानी असांजो जेको सूबो सिंध आहे उनजो पहिरियों अख़र एस आहे, एस लिखी करे तव्हां वरी स्पेस ॾींदव ऐं गाॾी जो जेको नंबर आहे त वरी तव्हां उहो लिखंदव, उन खां बाद में वरी तव्हां स्पेस जंहिं तारीख़ ते गाॾी रजिस्टर थी आहे ऐं तव्हां सेंड कंदव 9771 ते। जी हा, तव्हां सेंड कंदव 9771 ते। जेकॾहिं तव्हांजो दुरुस्त लिखिजी आयो, तव्हांजी मैसेज ओके थी वई, त पोइ तव्हां वरी लिखंदव टोक यानी टी ओ के लिखी करे तव्हां सेंड कंदव त तव्हांखे वधीक ऑप्शन मिली वेंदो त तव्हां पेट्रोल जे अहल आहियो, यानी तव्हांखे 500 रुपए जो पेट्रोल मिलंदो ऐं 500 रुपए जो पेट्रोल वरी ॿिए हफ़्ते मिलंदो। वरी जॾहिं तव्हांजो उहो ॿ हफ़्ता पूरा थी वेंदा त वरी जेको आहे सो तव्हांखे ॿीहर टी ओ के लिखिणो आहे, यानी तव्हां ॿीहर टोक लिखंदव वरी सेंड कंदव त तव्हांखे ॿिनि हफ़्तनि जो वरी तव्हांखे पेट्रोल मिलंदो, पर हफ़्ते जो अलॻि मिलंदो। जी हा साईं मुंहिंजा, अव्हांखे मालूमात ज़रूरु मिली वेंदी। वरी अव्हांखे नोट करायां थो, जेके दोस्त असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया त वज़ीर आज़म जे प्रोग्राम तहत जेको असांखे रिलीफ मिलियो आहे पेट्रोल जे हवाले सां, त महांगो पेट्रोल उन जे हवाले सां तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो आर ई जी माना रजिस्टर्ड आर ई जी वॾी बेसी में स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजी एन आई सी हणंदव, वरी स्पेस ॾेई तव्हां एस लिखंदव यानी सिंध सूबो आहे असांजो, उनखां बाद में एस खां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई तव्हां गाॾी जो नंबर लिखंदव, रजिस्टर नंबर जेको आहे गाॾीअ जो, उनखां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई तव्हां रजिस्टर्ड तारीख़ तव्हां लिखंदव, सेंड कंदव 9771 ते। जी हा, 9771 ते तव्हां सेंड कंदव, जेकर तव्हांजो एस एम एस दुरुस्त आयो त पोइ तव्हां टोक सेंड कंदव, टोक यानी टी ओ के सेंड कंदव, तव्हांजो बकाया मैसेज अची वेंदो त तव्हां रजिस्टर आयो ऐं तव्हांजो टोकिन नंबर तव्हांजो निकिरी ईंदो ऐं तव्हां उन कंहिं न कंहिं पेट्रोल पंप तां तव्हां पंहिंजो पेट्रोल विझाए सघो था। साईं मुंहिंजो हिन पेट्रोल महांगो आहे, महांगे पेट्रोल करे महबूब सां मिलणु अॼुकल्ह ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: मान नवाज धरती
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GFM 88 की आवाज।
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-310-5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: नालो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब भयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजे पुॼण ते। हयाती बखरियुनि सां अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका ऐं बरतानिया जो 13 ॾींहनि जो दौरो मुकमिल करे ॾह पहुची वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, सुध समाओ वारे वज़ीर अता तारड़ ऐं ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी वज़ीर-ए-आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली जे 81 इजलास में शिरकत कई। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ मौसर अंदाज़ में पेश कयो। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अॻवाननि सां मुलाक़ातूं करे अमुन, सलामती, तरक़ी ऐं गॾियल सहकार खे हथी ॾियण लाइ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ उजागर कयो। ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ूं अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि। फ़ैसिलो ट्रंप खे करणो आहे। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे, हाणे ॿाहिरि निकिरण लाइ हथ हणी रहियो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। मीरो ख़ान जे सजावर जुण जो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾुआरी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि लुकमान लाड़ी वटि पुलिस ॾुआरियुनि सां मुक़ाबिलो थियो। मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾुआरी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसनि जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनीअ तां क़तल करण जो इल्ज़ाम। कड़ियो घंवर में गुनी कैनाल में ॿुॾी वियल 7 वरनि जे नींगर जो लाश हथ न आयो। वारसनि जो धरणो गोलाड़ची भरिसां ॻोठु अहमद खोसो वटि। नींगर शहज़ाद पुटु बशीर खोसो गुज़िरियल ॾींहुं ॿुॾी वियो हो। इलाइक़े वासियुनि ऐं वारसनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल नींगर जी ॻोल्हा जारी आहे। इंतिज़ामिया जी मदद न मिलण ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। ऐं हिंगोर जा वेझो क़ौमी शाहराह ते ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टकरु। नौजवान फौत थी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। रसूलाबाद स्टाफ वटि हादसे में सोहेल अहमद चनो फौत ऐं साक ज़ख़्मी थियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहराबपुर, 03000 31 05।

0: 1909 0300 310 5109.
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: साथ ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार टूस आई होंडा शोरूम मेहरा नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी अजे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन डेनियन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने फेशियल रोताजगी और जवान नजर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मैसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेल फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश या बाजार दस्तयाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे
3: प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 9 दुकान सिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते
5: ला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिले आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
0: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 11 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: عالمی معاہدن کے ایک طرفو ختم یا معطل نہ تھو کرے سکجے طے تھیل معاہدن تے عمل کرن بل لازم ہوں دو آہے سنتاس معاہدے بابت عالمی سال سے عدالت بے پاکستان جے حق میں فیصلو دئی چکی آہے سمارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چوا تے سنتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نہ تھو کرے سکجے پاکستان سنتاس معاہدے جے تحفظ لائے گربل قدم کرن لائے تیار آہے پاکستان پینجے پانی جے حصے تے کو بٹھا نہ کندو سنتاس معاہدو پاکستانن جے بقا جو مسئلو آہے ٹرمپ دلدل میں فاسی پیو آہے ایرانی تجویزوں امریکہ وٹ پہنچی ویو آہن فیصلو ٹرمپ کے کرنو آہے ایرانی سپریم نیشنل کاؤنسل جے سربراہ محسن رضائی چیو آہے تے ٹرمپ دلدل میں فاسی پیو آہے ہانے باہر نکرن لائے हथ हणी रहियो आहे ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारिजी विया हथियार हथ कया विया आहिनि केपीके जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपीके बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा मीरू खान जे सजावल जुण जो थाने जी हद में मुबैना पुलिस मुकाबलो साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾुहार जी मारिजी वियो पुलिस मूजिबि लुकमान लाड़े वटि पुलिस ॾुहारियुनि सां मुक़ाबिलो थियो मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾुहारी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो वारसनि जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनीअ तां क़तल करण जो इल्ज़ाम आहे मेहड़ में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग ॿ ॼणा ॻोठाणा ज़ख़्मी भुटे मोहला में खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग वारो वाकियो पेश आयो गोलियूं लॻण सबबि ॻोठु रहम अली खोसो वासी ज़ुल्फ़कार राजा खोसो ज़ख़्मी थिया ॻणिती वारी हालति में लाड़काणे इस्पताल मुंतक़िल कया विया पनोआकिल में सघावती तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया ॻोठु अलायार टावरीअ में टावरी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में सघावती तकरार तां झेड़ो थियो झेड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि औरतुनि समेत ॿिन्ही धुरियुनि जा 15 ॼणा ज़ख़्मी थिया कड़ो गंवर में गोरी केनाल में ॿुॾी वियल 7 वरनि जे नींगर जो लाश हथ न आयो वारसनि जो धरणो गोलार जी भरिसां ॻोठु अहमद खोसो वटि नींगर शहज़ादपुर बशीर खोसो गुज़िरियल ॾींहुं ॿुॾी वियो हो इलाइक़े वासियुनि ऐं वारसनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल नींगर जी ॻोल्हा जारी आहे इंतिज़ामिया जी मदद न मिलण ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो नवाब शाह जे मोहम्मदी टाउन जे रहवासियुनि जो मुबैना तौर अगवा थियल नींगरीअ जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज जानिब वटि पंहिंजे वालिद जमीर ज़ाल शबाना ऐं ॿियनि माइटनि सां गॾिजी प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो मुज़ाहिरनि मूजिबि हथियारबंदनि 11 सालनि जी नियाणी रीमा खे अगवा करे विया आहिनि नींगरीअ खे बाज़ियाब करायो वञे हिंगोर जा वेझो क़ौमी शाहरा ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टकरु नौजवान फोत हिकु ॼणो ज़ख़्मी रसूलाबाद स्टाफ वटि हादसे में सोहेल अहमद चनो फोत ऐं एसाक ज़ख़्मी थियो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-5109।
5: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-180-0003।
7: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरा।

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार यार दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: सो

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापटा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ज़रियन मौजूद वज़ीर आज़म वट आला सतही इजलास कुछ देर बाद थींदो जंहिं में वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं ॿिया अहम ज़िम्मेवार शरीक थींदा। KPK समेत मुल्क जे सिक्योरिटी सूरतहाल ते गौर कयो वेंदो। आईन जे आर्टिकल 233 ऐं 234 तहत KP में एमरजेंसी या गवर्नर राज लॻाइण ते गौर कयो वेंदो।

0: या मुअतल नथो करे सघिजे। तय थियल मुआहिदनि ते अमल करण बि लाज़िम हूंदो आहे। सिंतास मुआहिदे बाबति आलमी सालसे अदालत बि पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे। सुध समावारे वफ़ाक़ी वज़ीर ततारड़ चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे जे तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणण लाइ तयार आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठाह न कंदो। सिंतास मुआहिदो पाकिस्ताननि जे बका जो मसलो आहे। ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे। हथियार फिटा कंदा या न ख़बर नाहे। जेसिताईं मां आहियां, उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख़्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रार ई रहंदी। निगरानीअ लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़चे जे साल्स मुल्क कतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात। कतरी साल्सनि ईरानी तजवीज़ुनि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराक़चे हवाले कयो। अब्बास इराक़चे अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ूं अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि। फ़ैसिलो ट्रंप खे करणो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। चार दहशतगर्द मारिजी विया, हथियार हथ कया विया आहिनि। केपीके जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सिस जो ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम। पंहिंजे ई बम फाटण सबबि दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो। बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जे हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाईनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। गंबट भरिसां आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पेसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी। भारो शहर में धुरियुनि में पेसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़े दौरान फायरिंग थी आहे। फायरिंग में गोली लॻण सबबि अजीब आरिजो मरिजी वियो आहे। ॿ ॼणा फौत थी विया आहिनि। लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। मीरू ख़ान जे सजावल जुणे जो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾुहारी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि लुकमान लाड़ी वटि पुलिस ॾुहारियुनि सां मुक़ाबिलो थियो आहे। मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾुहारी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसन जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनी तां क़तल करण जो इल्ज़ाम। मेहड़ में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग, ॿ ॻोठाणा ज़ख़्मी। भुटे मोला में खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग वारो वाकियो पेश आयो आहे। गोलियूं लॻण सबबि ॻोठु रहम अली खोसो वासी ज़ुल्फ़कार ऐं राजा खोसो ज़ख़्मी थिया आहिनि। गणती वारी हालत में लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पनो आकिल में सगावती तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ॻोठु अलायार टवार टामरी में टावरी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में सगावती तकरार तां झेड़ो थियो आहे। झेड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि औरतनि समेत ॿिन्ही धुरियुनि जा 15 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। मंज़ूराबाद वेझो मांझंदि में वापारियुनि ऐं शहरनि जे पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शटरबंदि हड़ताल। थाणे आॾो धरणो। वापारियुनि ऐं शहरनि बदमनी ख़िलाफ़ रैली कढी थाणे आॾो धरणो हयो। मुज़ाहिरनि जो चवण आहे त कपिड़ा तब्दील न करे ॾियण ते दुकानदार खे तशद जो निशानो बणाए भंजड़ा कई वई आहे। बिना देर जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इट्स 1 PM

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120 इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।

खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, क्या बात है, क्या बात है. बहुत ही खूबसूरत सी नात हमने यहाँ पर सुनी प्रोग्राम के अंदर. यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे जरूर बताइएगा. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों और कैसे करने वाले हैं. बिल्कुल जी, आप लोगों को बताएंगे क्या तरीकेकार होने वाले हैं प्रोग्राम में शामिल होने के. लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चले कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है. तो आज के प्रोग्राम की अगर टॉपिक की बात करें तो मेरा आप लोगों से सवाल होगा कि भाई आप मुझे बताइए ऐसी क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ हो तब भी वो खाती रहती है. हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ हो तब भी वो खाती रहती है. हाँ जी, स्टॉप नहीं लगता उसको. आप मुझे बताइए इसका जवाब. अगर आप जानते हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है. जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा. पेज पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. मैंने अभी देखा कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया. तो भाई पोस्ट को लाइक भी किया करें और साथ में शेयर भी किया करें. ये दोनों काम, बल्कि ये तीनों काम आप लोगों ने करने होते हैं. तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर भी करते जाइए. अच्छा, उनके अलावा अगर तुम्हारा असानी प्रोग्राम जो हिस्सो बनजो पाया तो लाजमी असांखे जेको आहे न पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾेई छॾींदा कयो. लाजमी इहो मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो त तव्हां सभु जेको आहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे रहिया आहियो. ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से कोन मिली रही आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण लाइ छा कंदा, इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां. बिल्कुल जी, तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदा आहियूं प्रोग्राम जे अंदर. ऐं नंबर तव्हांखे इन लाइ ॿुधायो वेंदो आहे जी तव्हांजे लाइ आसानी थी सघे ऐं तव्हांखे इन चीज जी टेंशन न हुजे त बाबा हाणे असां किथां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघूं था. छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे शहरनि में अवेलेबल थी सघे थी. उनजे लाइ बसि तव्हांखे नंबर से राबितो करिणो आहे. नंबर जेको तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां, नंबर से तव्हां लाज़मी राबितो करे वठंदा कयो, कॉल कंदा कयो या वरी हिकिड़ो नंढड़ो मैसेज छॾे ॾींदा कयो त भा अदा हिन फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन मिलनि था, महिरबानी कयो अवेलेबल कराए छॾियो, त हू अवेलेबल कराए छॾींदा. ओके जी, सो अगरि तव्हां नंबर से राबितो करणु चाहियो था त नंबर आहिनि 03273843309 3032 84 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03125025907 3012 50 25 907. ही तारीख़

0: और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए, तो मैं आपको तारिक भाई का नंबर बताती हूँ ना प्रोग्राम के अंदर, तो उसके ऊपर आप राबता करके तारिक भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपने कहाँ से परचेज करनी है, या फिर अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो तारिक भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे तारिक भाई हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उन्हें मसला बताइए कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए जी, बाकी बातें हम जो है वो बाद में आकर करते हैं। यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर, आचर ऐं

जो अभी आई चमक माखी है जेड़ो डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं White Asian Day Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत प्यारा और ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलने चाहिए तो वो आपको बताते हैं नंबर जिसके ऊपर आप रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहेंगे। अच्छा उन खां अलावा अगर तहां सने प्रोग्राम जो हिस्सो थियो पया तो तहां सने फेसबुक पोस्ट के लाइक और शेयर कंदा कयो ऐ उन खां अलावा कमेंट करे मुखे बुधा तो तहां सा गड मौजूद आ है ऐ जे के मानो सने पोस्ट के लाइक और शेयर कंदा ना तो ऐसा फायदो ही पहुंचंदो आ है त खोर सारी मानन के सा बुधाई सगदा त बाबा साईं तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तहां जी खूबसूरती जलाए भी डाडो जरूरी आ है। बिल्कुल जी, अगर खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजर अंदाज कर दिया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी नजर आए, नरम और फ्रेश महसूस हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ खूबसूरत नजर आना काफी नहीं होता बल्कि आपकी स्किन को रोजाना वक्त देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अपनी ब्यूटी के रूटीन के अंदर आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो ये चीज जो वाजे हो जाएगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके स्किन को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएगी बल्कि आपके चेहरे पर जितनी भी ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि रोजमर्रा अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं, जैसे कि विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले तैयार करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जिसे आप लगाएं तो आप खूबसूरत तो हो जाए लेकिन आपके चेहरे की हिफाजत जो है ना वो बाकायदा से होती रहे तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ये होगा जनाब कि आपको जो खूबसूरती मिल चुकी होगी ना वो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज भी आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला से मुराद ये कि भाई इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये आप लोगों को देते हैं जनाब फेशियल वाले रिजल्ट्स। यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि भाई आप जो हैं कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, लेकिन ये कमाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का होगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वाले रिजल्ट दे रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप मर्द हजरात भी कर सकते हैं, आप खवातीन भी कर सकती हैं। हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप हो, सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जाइए और परचेज कीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा हाँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीके कार होने वाले वो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें तो साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश लाजमी परचेज कीजिएगा। फेस वॉश भी लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए, दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले ऐसे जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। ओके जो न खा अलावा डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना बाबा इन के बारे में थोड़ा तक बुधाईंदी हला तो डी स्किन जो फेस वॉश जो है इनके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड कर वो है। हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो हों ना एतो फायदेमंद हों स्किन के लिए जो स्किन के अंदर तीन वो स्किन के हाइड्रेट रख स्किन के मॉइस्चराइज रख स्किन के डीपली क्लीन रख छो तो खोड़ सारा माण अड़ा हूं ना जी पाँच डेली बेसिस जहाँ जिंदगी तुम गुजारियो था उन जिंदगी में खोड़ सारा मसरूफ़ हूं तुम्हारा कमकार अड़ा हूं जो तुम्हें बाहर वनो पवन है चेहरे से इलाही गंदगी जमा थी वेंदी है, मिट्टी होंगी धूल होंगी पॉल्यूशन।

वॉश ट्राई करे सब त अगर मगर के सजो जेको नंबर ताके बुधायो ना उन नंबर ते बस ताकड़ी कॉल करे बैठो या एकड़ो मैसेज करे बैठो आई उनन के बुधायो त तवा भी इस्तेमाल करन चाहियो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश लगाईंदा रहो आई सोणा थींदा रहो उन का अलावा जेके जेके सोणा मानो सा के बुधन पया सबनी के चोंदा बाबा मोहब्बतू आइन ता जो प्रोग्राम ता जो पहिंजो आहे आई इन सोणे प्रोग्राम में तवा सा के जॉइन कना वनो पया 8881 ते आई फेसबुक ते अच्छा फेसबुक ते बिल्कुल तवा जा प्यारा प्यारा कमेंट्स प्यारा प्यारा मैसेजेस मुखे मिलना वनन था आई अज सवाल जको वहां का पुछो आयो बिल्कुल यो पुछो आयो तवा मुखे बुधायो वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो खाती रहती है उन के अलावा एकड़ो गानो हलायो आ गानो बुधू था आई तवा छा था जो मैसेज तरफ अचू था पोस्ट के लाइक शेयर कना लो अज कंजूस न कयो था लव

would you do me? Can you handle the heat, Pia? Set up a chicken, got a chicken, the car. Kya baat hai? ओके जी, ये है गैंगस्टर गुड़िया और इसको ये दुनिया बोलती है। अरे भाई, दुनिया ऐसा क्यों बोलती है? आप ऐसा कीजिए जरा, आप मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने किया या फिर अभी तक रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके जी, यहाँ पर आहत भाई कहते हैं कि तमहा कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल खा दी हुआ है। और हबीबुल्ला लगारी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हबीबुल्ला भाई कहते हैं माशाल्लाह योर शो, थैंक यू वेरी मच। और चाचा तमहा लिंक शेयर किया, बिल्कुल तमहा जो गानो हलायूं था। और सफदर लिखते हैं थैंक्स डियर, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्ला कहते हैं इतनी खामोशियां क्यों होती हैं तेरी आगोश में एक कब्रिस्तान, लोग तो जान देकर तुझे आबाद करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आहत भाई कहते हैं कि आपदा परवीन जो गानो तमा अन्याता ही ना है बुधरायो एडी नाराजगी आए छा भला न भा न भा न भा नाराजगी वरी तमा सोनन भाईरन सा छोक नासी तमा के बिल्कुल गाना बुधराई नासी पर एकड़ी छरता तो तासा ने पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना रहो। आई मुखे बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो थवै अन्याता ही कोना। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा जी करीबी जनरल स्टोर से मिली रही है या को मुख यो भी लाजमी बुधाजो, ठीक है। गुड़िया अब बुढ़िया हो चुकी है न बाबा, गुड़िया के बुढ़िया थे में अना थोड़ो अरसो लगंदो। अच्छा, दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। अच्छा, नूर फातिमा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं शहर जेकब आबाद से, भाईजान खुशामदीद। अच्छा, तारिक भाई लिखते हैं कि अदी सिद्रा अली नवाज भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अली नवाज भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। अली नवाज भाई आपको वेलकम। यो हलवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे थी कौन मानू वटन था कौन नथा वटन बुधायो तो सही। कुटकी नो बाबा मानन के छो नथा वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एडी भली क्रीम ताके बुधायां थी तो ता नथा वठो या सदा जकाई न या सरासर ना इंसाफिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जको फायदो आ ना वो ताके मिलंदो आई जनी ता इस्तेमाल करना ताके खबर पंदी बाबा सिद्रा एतरो छो बुधाए थी। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूला है ना के डॉक्टर्स ठायो आहे त तमा के या भी टेंशन करने जी जरूरत ना है त बाबा असन जी स्किन खराब थी सके थी या असन का भी क्रीम ना हु लगाईंदा त तमा अगर का भी क्रीम ना हु लगाईंदा त तमा एक दफो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी देसो। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा सब नी जलाया है यानी कि मर्द मायूं हर को हणी सके थो।

अच्छा दर्द दिल लिखती है कि आंखों में ठहर गया वो शख्स है जो हकीकत में कभी हमारा था ही नहीं। आईली सफदर लिखते हैं कि माशाल्लाह मेरे साथ मुख्तियार मंगी भी आपका शो सुन रहे हैं, उन्हें भी वेलकम कर दें सिडो। मुख्तियार भाई को वेलकम कहते हैं दिल से, बहुत रिस्पेक्ट है भाई के लिए, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और लिखते हैं कि मुख्तियार भाई को मैं अपने पैसों से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले दूंगा, जरूर आप उन्हें लेकर दीजिएगा। मुख्तियार भाई को भी बोलिए कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहे, उन्हें पता चलेगा भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो कितनी कमाल की प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के जब वो गाने बनाएंगे ना तो आए हाय छा जाएंगे।

हाँ जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा, और कौन कौन लोग हैं जो हमारी भाई इस महफिल में बैठे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं। क्या बात है भाई, हाथ मत दिखाओ। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि झंडोमरी वालों को सलाम। ओके जी, सलाम आपका पहुंच गया है। अखलाक भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, क्या बात है। नूर फातिमा कहती है हानी मेरी एक बात सुने। जी जी बोले, कहती है अम्मी को सलाम कह रही है। अम्मी, अच्छा मुझे सलाम कह रही, बहुत शुक्रिया अम्मी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरवा ने टॉपिक का जवाब दिया है, टॉपिक इंसान और उसकी लालच। सही है भाई। और मोहम्मद जमान भाई कहते बुआ आज प्ले करें ये वाला गाना, मैं बिल्कुल आपके लिए लगाती हूँ, एक मिनट जरा सब्र करें। और नूर फातिमा आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है, मैं देखती हूँ जी जितने गाने प्ले हो सके लगा देंगे। और रशीद भाई हमारे साथ मौजूद है, रशीद भाई हमें हैदराबाद से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई आपको हैदराबाद में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि चंदा आज एक सॉन्ग प्ले करना, डेडिकेट आयशा एंड माय सिस अलीजा एंड यू। शो सुन रहे हैं, शमन मिलारी का है हिक यार मुंह कयो हो, हिक यार मुंह कयो हो, चले यो मिलियो तो हलाय वठूंदा, ठीक है। इन खां अलावा तमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो पिया तमा जे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे, पर डी स्किन जो फेस वॉश अञा ताई अवेलेबल कोन थियो आहे, त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो बि तमा अवेलेबल करायो पंहिंजे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते। ऐं हाणे इहा आसानी त तव्हां वटि बिल्कुलु आहे, त तव्हांखे नंबर ॿुधायो वञे थो, ऐं नंबर ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन जो फेस वॉश हुजे अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा, आसानी थी वेंदी तव्हांजे लाइ।

अरे क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। और चाचा लगते हैं कि ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका जवाब है क्योंकि वो चीजें खाती हैं जलती है मगर कभी। ओके ओके ओके, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। और न का अलावा चौथा आपके टॉपिक का बस सही है, एक आंसर सही था बहुत ज्यादा मत दीजिए। आई तो हमारी झंडू मरी वारन के सलाम डिनायन, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ ही जी भाई पंजल सुमरो, बॉबी खोड़ो और चाचा अब्दुल्ला आपको सलाम दे रहे हैं, उनका भी आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, सभी ये पुराने लिसनर्स हैं हमारे, वेलकम कहते हैं।

भाई यो कमाल अथवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अदे ही गानों डेडिकेट भी माण्हुनि खे कयो आहे जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कनि पिया। अच्छा छा था चओ कराची में डी स्किन जो फेस वॉश कोन थो मिले? तारिक भाई के चओ, तारिक भाई के बिल्कुल चऊं था कराची में तव्हांजे लाइ डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए छॾींदा। हिदायतुल्ला कहते हैं कि आज आवाज कम है सॉन्ग की, तुम्हारी तो सही है लेकिन गाना चलाते हो उसकी आवाज कम है, सच्ची बताए। अब सही है या अभी कम आ रही है?

एतिरो सुहिणो थी वियो आहे हाणे गुलाब बि तोखे ॾिसी शर्माइनि था. इहो कमाल बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अथव, अवां बि लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं अवां बि सुहिणा थी वञो. छाजो इंतज़ार था कयो? अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडो मरी वालों को सलाम के साथ मुबारक भी हो, क्योंकि झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी. ओ यहाँ गाल कई ना कम मजी तमाम भी अवेलेबल कराए सको था. पोस्ट के लाके शेयर कयो था कौन अजो कंजूसियों कयो था अजो कंजूसियों कयो था. अच्छा साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं, कहते सलाम सिद्रा मुस्कान मुलायम इस्लाम अदर फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से. आज कोई शादी वाला गाना सुनाए. ओके जी, शादी वाला गाना आपको सुना देते हैं, क्या याद करेंगे. किशोर भाई कहते हैं अदा गुड़िया भी कड़े ना दिल जी रानी हुई हाणे कोने छा थियो अथसि भला हाणे. आहाद भाई बहुत शुक्रिया आपका. लालू भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. लालू भाई को प्रोग्राम पसंद आ चुका है. अच्छा वहीद वफाई भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्रा जी क्या हाल है आपके, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम राम जेकब आबाद से आपके साथ है, बहुत शुक्रिया भाई. अच्छा ऑनलाइन का मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन फेस वॉश मिल रहा है या फिर नहीं, ये हम पूछकर बता देंगे, या फिर आप नंबर जो बता रहे हो ना उसके ऊपर रابطہ करके आप खुद ही मालूम कर लीजिए कि भाई ऑनलाइन आप सेल कर रहे हैं या फिर नहीं. जी भाई ये जो दोबारा से उनको जवानी मिली है ना, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है. हाँ भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है. ओके अखलाक भाई बोले बोले क्या कहना चाहते हैं. निदली कहती है कि यादा यादा सिंधी गानों प्ले कर हाजिर कयां थी. अरे अदा कहती अदा हथ मथे करे छड़ियो वा हाँ ये न चेजा तो हिक ना ओनली तां हथ मथे कयो, हथ मथे कंदा त ख़बर पवंदी त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था, ऐं अगरि ॿई हथ मथे कंदा त ख़बर पवंदी त तव्हां गॾु डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां फेस वॉश बि इस्तेमालु कयो था. सो हाली हिकु हथ मथे कयो अथव, मूंखे ख़बर आहे त अञा ताईं फेस वॉश जो यूज़ कोन कयो हूंदो, छो त फेस वॉश अञा ताईं सभिनी जॻहि ते अवेलेबल नाहे थियो. सो जॾहिं फेस वॉश बि अवेलेबल थी वञे तव्हां इस्तेमालु कयो त पोइ ॿई हथ मथे कजो, ठीकु आहे. हाली हिकु हथ मथे करे मूंखे ॿुधायो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था, जे थोरी दिलि खे टेक मिले. ओके सो इते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा. वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾिठूं था, तव्हां काॾे न मुंहिंजे हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हणो ऐं सोणा थियो.

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: तो ले चुकी है सुल समावारे में फांसी गजीर है तारण जवाद सिंतास माय देखे खत्म तोने मौतल न तो करे सकते पाकिस्तान सिंतास माय दे जे तहफुज लाए घुरबल कदम खड़न लाए तैयार है पाकिस्तान पंजे पानी जे हिस्से ते को बिठा न कंदो सिंतास माय दो पाकिस्तान जे बका जो मसलो है ईरान जी सूरतहाल घणी खराब आए हथियार फिटा कंदा या न खबर नाहे जेस ताई मां आया उत्तर कोरिया जे सरबराज ठीक रहंदो वाशिंगटन में मीडिया सा गालाइंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंद कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरकरार आहे जेका बरकरार ई रहंदी निगरानी लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकचीअ जे सार्स मुल्क कतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कतरी सालसन ईरानी तजवीज़नि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराकची हवाले कयो अब्बास इराकची अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे ईरानी तजवीज़ू अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि फ़ैसिलो ट्रंप खे करणो आहे ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो पहिरियों कदम वधायो
4: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सकरन मेहरापुर माथली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, आपका फीडबैक क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे एरिया में नहीं मिल रहे हैं, भाई साहब ये कौन सी बड़ी बात है, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हो। वो कैसे अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को नंबर ऑलरेडी बता दिया जाता है जिसके ऊपर आप राबता करके इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए। और साथ ही साथ नंबर जरा नोट कीजिएगा, नंबर आपको बता रही हूँ, नंबर से जनाब 03-12-50-25-907 बड़ी 312 पंजाह पंजवीह 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बड़ी 332 73 84 309। ही नंबर साइन जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो अगर हिकड़ी ॻाल्हि इहा बि अची वञे थी त तव्हां अगरि अञा तव्हांजी उमिरि नाहे थी या फिर तव्हां क्रीमूं नाहियो इस्तेमालु कंदा त पोइ तव्हां मां इहो त तव्हांखे लाज़मी चवंदो त तव्हां हिकु दफ़ो जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे यूज़ ज़रूरु करे ॾिसो, ट्राए करे ॾिसंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहो सफ़ा रेगुलर जेके तव्हां नाइट क्रीमूं लॻाईंदा आहियो उन्हनि जहिड़ी त बिल्कुलु बि नाहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾेई सघे थी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जी एडिशन कई वई आहे। ऐं ही वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेकी आहिनि ही बाबा महंगनि महंगनि फेशियल्स जे अंदरि एड कया वेंदा आहिनि। ऐं जॾहिं तव्हां पूरे पाकिस्तान में रिसर्च कंदा त पूरे पाकिस्तान में ही वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहिनि सिर्फ़ ॿ ऐं टे ॿ या टे प्रोडक्ट आहिनि उन जे अंदरि एड थियल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि उन्हनि मां हिकु आहे। सो पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं पाकिस्तान में ॿाहिरि जी मुमालकत में बि तव्हांखे मिली रही आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको कमाल आहे न उहो तव्हांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे बाबा एतिरी ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि बि आहे, निशानी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां परचेज़ कंदा त ख़ासि करे जॾहिं दुकानदार तव्हांखे थोरो चूनो लॻाईंदा आहिनि, दुकानदार चूनो लॻाईंदा आहिनि त बाबा उन्हनि वटि अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न हूंदी, तव्हांखे तव्हां ॻोठ खां असांखे ॿुधो पिया त तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले, त दुकानदार वरी तव्हांखे का ॿी क्रीम ॾेई छॾींदो, चवंदो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम अथव हीअ खणी वञो। ऐं तव्हांखे वरी ख़बर न हूंदी, तव्हां पढ़ियल न आहियो या तव्हांखे सम्झ न आहे, त तव्हांखे इहा निशानी ॿुधायां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी अथव बाबा जेका सफ़ा घणी मशहूरु आहे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डॿी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ऐं डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसी करे ऐं वॾनि वॾनि अखरनि में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखियल अथसि, इहा चीज़ जेका आहे तव्हां इन जी नोट करे वठो। ऐं जॾहिं तव्हां वञो दुकानदार वटि त हुनखे चओ बाबा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, ऐं जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे ॾिसो त इहा चीज़ पक कयो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उन जे डॿी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ऐं डॉक्टर माई जेका इहे बाबा निशानी तौरु असां ॾिनी आहे जीअं तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, यानी कि हिन जे अंदरि को बि केमिकल नाहे, तव्हां बेफ़िक्र थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, सुहिणा सुहिणा थी वञो, पल पल थी वञो, ऐं पंहिंजो जादू जेको आहे न सभिनी खे ॾेखारियो बाबा त हाणे तव्हां बि पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो था, हाणे तव्हां बि सुहिणा थी विया आहियो। ऐं हा इहा ॻाल्हि त विसरी वई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको रिज़ल्ट आहे न उहो तव्हां सभु हासिलु करे सघो था, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। सो अगरि आप मर्द हज़रात हैं और ये सोच रहे हैं कि भई हम लगा सकते हैं या नहीं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप सब लोगों के स्किन के हिसाब से तैयार की गई है, इसे ऑल स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। आपकी स्किन कितनी ही सेंसिटिव क्यों ना हो आप लगा सकते हैं, ये चीज जहन में रखे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी शामिल करेंगे। डी स्किन का
जो फेस वॉश है ना जनाब, ये बड़ा कमाल का है। ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश बना है ना कि भाई आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ये तो कमाल धमाल है। और डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम की एडिशन की गई है, और हाइलोरोनिक सीरम जो होता है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके अंदर एड किए जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर भी हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, डीपली क्लीन करता है और आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है। तो इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश, 2 से 3 मर्तबा आप दिन में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, रात को लगाया, और फिर रात को आप अच्छे से अपना फेस वॉश करके डी स्किन ब्यूटी क्रीम को भी लगाया, ठीक है। राइमिंग बन गई है। तो और इसी तरीके कार को जब आप फॉलो करते हैं तो यकीन जाने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। अच्छा, तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें मिलते जा रहे हैं, और क्यों ना मिली जनाब, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास भी दिलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आपके लिए एक गाना लगा देते हैं। गाना सुनेंगे जी हम शादी वाला, क्योंकि भाई ने बोला ना कि शादी वाला गाना सुना दें, तो भाई जियो करें।

ओके भाई गाना तो ॿुधण ॾींदासीं पर हिते पैनल ते खोड़ तव्हां जा मैसेज जमा थी विया आहिनि सो पैनल जी तरफ बि अची वेठूं था ये हमारे साथ मौजूद है मौलाना इस्लाम मदद झंडो मरी खां अली हसन खास के लिए मंजूर अली खास के लिए गुल बहार खास के लिए यार मोहम्मद खास के लिए भाव तव्हां जो मोहब्बत हुआ बाबा प्रोग्राम पसंद कयो पिया ऐं तव्हां प्रोग्राम जो हिसो भी बणजी विया आहियो उन खां अलावा हमारे साथ ही मक़सूद मलाह के दे सिदरा मुस्कान डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट अमीरों वाला एहसास दे चुका है और मैं खुद अब अमीर लगता हूँ सही समय का ये मीर क्या अमीर लगते हैं और सिदरा मैंने सुना है आपकी साइड में जैतून डाढ़ा थींदा है ना आपका तो अपना बाग होगा हाँ हाँ जैतून डाढ़ा थींदा है।

अच्छा गो टू नूर मोहम्मद कोरकानी से फ्रॉम कादिर बख्श कोरकानी हमारे साथ हैं। कहते प्रोग्राम वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया कादिर, बहुत आंसू मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया। महबूब अली हमारे साथ है मोरो सिटी से, कहते कौन से वेलकम खुश आमदी सिस्टर, वेरी नाइस योर शो वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कौन से हमें सॉन्ग सुनाए हदीका क्याने का, सो नाइस ऑफ यू। ओके मैं हदीका क्याने का कोई भी प्यारा सा गाना आपको डेडिकेट कर दूंगी। ये हमारे साथ है सामल ढीलू फ्रॉम मोरो, फ्रेंड अब्दुल रजाक को सलाम देना चाहता हूँ, एंड प्लीज प्ले शमन मिराली रात खामोश आ चंद्र मधोश आ माँ भाजी पसंद हलांजी फुल कोशिश कदम। और चाचा खालिद हमारे साथ है पेनल पर, ओके चाचा अगर हाणी न हलाए तो गानों तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुकून से गानों बुधंदी, ठीक है छो तो तुम गानों को जड़ो है। ओके जी घोटकी से गुलशेर मंगरू हमारे साथ है, सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर सिद्रा, मुझे गाना सुनाओ मुमताज मलाई का सॉन्ग है। अच्छा गानों लिखियो आ सही में कोशिश क्या थी ताजो गानों बुदना सी। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम आपको। और ये हमारे साथ हैं जियो चाचा खालिद जियो झंडो मरी खां अली हुसैन खास के लिए, मंजूर अली खास के लिए, गुलबहार खास के लिए, यार मोहम्मद खास के लिए भाव साथ हुआ भला तामे का डील बिल थी आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन झंडो मरी वाला हाल हवाल तो यो। अच्छा मकसूद भला कहते हैं सिद्रा कितना मुश्किल सवाल कर दिया है कितना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको जवाब ना दे सकूं जवाब जेको तुम्हारे दिनो आ ना बाबा, यो पढ़ने जड़ो आ ही पर छा कयो पढ़ी ना था सकूं बस तमाम मुझे ख्याल है मैं सही जवाब दे छड़ियो है। अच्छा अल्ताफ कोसू जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज प्ले, अच्छा गानो लिखियो आही डेडिकेट बिस्मिल अजरा कोसो एंड मी, थैंक्स चाचू थैंक्स। और महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं अच्छा जवाब दिनो आही सही सही सही। घोटकी से गुलशेर मंगरियो सिद्रा गाना जो लिखा है वो सुनाओ, हाजिर हाजिर हाजिर। अब्दुल्ला महर भाई मीरपुर खास से कहते हैं डेडिकेट माई सिस्टर साइमा मीर को एंड सिस्टर दर्द दिल को निदा अली, डेडिकेट आपको सॉन्ग होमेरा चन्ना। ओके अब्दुल्ला भाई अज तुम मतलब डेडिकेशन सेंड कर छो सही है सही है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था न हबीबुल्ला थेबू कहते हैं शो तमाम लाजवाब है, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। मुनवर मुगल आ चुके हैं कहते हैं सलाम बेना सिद्रा मुस्कान और लाड़काना वालों को, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कभी कभी आकर ऐसे बिल्कुल सलाम दुआ किया करें, क्या हाल चाल है ठीक ठाक है मजे में। और वरियाम अली हमारे साथ कहते हैं सिद्रा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक सा सलाम था कयूं, एंड वीआईपी सफा शो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जियो करे बिल्कुल बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल ही अलाए चाहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना वारन का तो पूछो।

बाबा अगर तव्हां जे घरनि में बि शादी आहे या तव्हां जी शादी थी रही आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे न विसारिजो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो जीअं तव्हांखे उहे रिज़ल्ट्स मिलनि जेके तव्हां हासिल करणु चाहियो था। तव्हांजे चहिरे ते एॾो VIP नूर अची वेंदो, तव्हां खां माण्हू पुछंदा ॿुधायो त छा इस्तेमालु कयो अथव, कहिड़ा फेशियल कराया अथव, ऐं तव्हां हुननि खे चओ बाबा फेशियल जो टाइम असां वटि त कोन्हे को, शादी जो घर आहे, इलाही सारा कम हूंदा आहिनि। तव्हां बसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा, तव्हांखे मिलंदा उहो रिज़ल्ट जेको सफ़ा महांगा महांगा फेशियल कराइण खां पोइ तव्हांखे मिलंदो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो कमाल अथव।

अरे क्या बात है, गाना तो बहुत कमाल का था, हमने एंजॉय किया। और यहाँ पर फराज देहरी हमें सुन रहे हैं। उसामा और फराज की तरफ से सलाम, वालेकुम अस्सलाम, भाइयों को वेलकम हो गया।

आहत भाई लिखते हैं कि असां डोडियूं भी पांचियूं कयूं आहिनि. अल्लाह वाह सही वाह तरक्की आ वियो छा. हां गुलाबी जोड़ी जी वाकई वाई बची पई वीडियो भी ओड़ो होयो स. अच्छा शब्द लिखते हैं कि नाई जब आप सॉन्ग के बीच में बात करती हैं तो अच्छा लगता है. कुछ मानो उनकी वरी सुठो नाए लगन दो पर असा ही बलू लगन दो.

ॾियो हर अवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम कंहिं कंहिंखे यादि आहे हिकु हिकु मरतबा कॉमेंट में त लिखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर लॻे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अच्छा हुन खां अलावा तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जिन अञा ताईं कोन कयो आहे

बिल्कुल जी, याद आ। और अखलाक भाई कहते हरू भरू हथ मथे कराया थई, हरू भरू कोन कराया बाबा, खबर पई तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था। अमानुल्लाह दल हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम भाई। मिदड़ी लिखती है कि हिरा हाशमी माय फ्रेंड, मैं क्यों भला पीछे रहूं, ओ यह गाल। अच्छा, हमारे साथ उसामा और फराज हमारा शो रोज सुनते हैं, बहुत शुक्रिया उसामा और फराज, आप दोनों को वेलकम कहते हैं।

भाई असांखे त सभु कुझु यादि आहे, तव्हांखे यादि न आहे त सही आहे, तव्हांखे बसि डे स्किन ब्यूटी क्रीम यादि हुजे. नज़र मोहम्मद भट्टी भाई में सुन रहे हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है. शाहिद भट्टी और सिकंदर मक्सी शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी. मालिक अच्छा, नज़र हुसैन मलिक भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मलिक भाई. अली नवाज सारकी हमारे साथ हैं, कहते हैं मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में डी स्किन मौजूद है. वाह साई वाह, मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी. बाबा तव्हां वञो ऐं वठी अचो. अच्छा नज़र मोहम्मद भट्टी भाई, छा था चओ आज राहत फतेह का गाना सुनाए. मां बिल्कुल कोशिश कयां थी तव्हांखे गानो ॿुधराईंदासीं. फरवा कहती आहे आपी प्लीज सॉन्ग रिक्वेस्ट था, यकीन की आएगी ये रातां कभी, मां ॾिसां थी हलाए वठूं था. और अलीशी बिरोही हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, आप कैसी हैं? आप हमारे साथ मीरपुर बठोरो शो रोज सुनता हूँ लेकिन मैसेज आज किया है, गुड हो रहा है आपका शो. बहुत शुक्रिया अलीशी बिरोही भाई, वेलकम कहते हैं आपको. अच्छा हजार जतोई भाई भी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम हजार भाव, हजार को लो कराया करा डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो सही आहे.

अच्छा फरवा की दी, यहाँ पे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट वीआईपी मिला है। हाँ जी बिल्कुल, मेडिकेटेड फार्मूला है, इसीलिए तो कहती हूँ सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निजाम भट्टी कादरी भाई हमें सुन रहे हैं मटियारी खां, निजामुद्दीन भट्टी और अली शेर भट्टी, फरहान अली भट्टी, न्याज मोहम्मद भट्टी, जाहिद भट्टी, फराज भट्टी, बुधू पया अदी, अॼु त असांजी फरमाइश पूरी करियो, शमन मिराली जो सॉन्ग ॿुधरायो, हाज़िर शमन हलायूं था। अच्छा चाचा कहते लगाया पयो लगाया बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ओ ये लगायो लगायो बाबा, शादी कैंसी भी नई उमड़े ये गानो हलायो सी। निजाम भट्टी कहते या क्रीम घणे मिलंदी मटियारी माता सा वारे, अलाए अगते तां छा लिखियो पर मटियारी में तां के मिली वेंदी, तां पांजे करीबी जनरल स्टोर सां वनी पुछा कराई सघो था। और फराज डहरी भाई जेको आहे उहो बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पियो, वास साईं वायु त कमाल थी वियो। ई बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो, हिते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां कारी न वञिजो, इते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग। आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। तो

0: It's 2:30.
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ

0: अॼु कल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।
4: लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

हाँ भाई देख ले, ये कितने मासूम है लड़के, शादी का गाना सुनकर ही खुश हो जाते सही बात है। चलें, जो जो लड़के बेचारे चाहते कि भी हमारी शादी होनी चाहिए, तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई ना, तो वजह ये है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप भी इस्तेमाल कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन बाद ही आपको क्या ही जबरदस्त और मस्त सा रिजल्ट मिलेगा, जो देखकर आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप भी इस्तेमाल कीजिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगा सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यह खास गाल है, बाबा ही हर स्किन जी मथा लगाए सकजन था। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो का टेंशन जी गाली कोने का, ता सब मारू लगाए सको था, ई पांजी खूबसूरती में इजाफो आने सको था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी यह गाल मुके डाडी सुठी लगनिया, ता बाबा इनके हर स्किन जलाए तैयार कयो या ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे।

बिल्कुल जी, सदको ही वेंदा जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि आप भी इस्तेमालु करणु चाहते हैं तो लाज़मी इस्तेमालु कीजिएगा। ख़ूबसूरती हर किसी की ख़्वाहिश होती है जनाब, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि भई ख़ूबसूरत तो हम बनना चाहते हैं, ख़ूबसूरत तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट लगा लिया तो हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, हमारी स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं या फिर हमारी चेहरे की स्किन खराब हो जाती है, रेड पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाते हैं जो आप नहीं चाहते कि भाई हो, इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए, आपकी स्किन को हमेशा खूबसूरत रखने के लिए, आपके चेहरे पर वो रिजल्ट्स लाने के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने के बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स हैं। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये बजाहिर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है। इसका मतलब ये होता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लगाएंगे तो रात के टाइम नाइट क्रीम की तरह, लेकिन रिजल्ट्स आपको फेशियल वाले मिलेंगे। अब इस चीज को मैं जरा क्लियर करती जाऊं कि बहुत सारे लोग अब मुझे ये सुन रहे हैं, कहते हैं भाई फेशियल का रिजल्ट मिलेगा, फेशियल की चीजें इसके अंदर एड है, तो अगर वो लगाएं तो वो क्या इस तरह से लगाएंगे कि जब आप क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो फेशियल की तरह आप मसाज करने ना लग जाना। मसाज ना किया करें। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, कोई भी ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर मसाज नहीं करना होता, बस सुकून प्यार से लगा दिया करें। डी स्किन ब्यूटी क्रीम खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी, सुकून से लगाइए। हाँ, इसके अंदर चीजें फेशियल वाली जरूर है, लेकिन ये फेशियल नहीं है, इस चीज का जरा ख्याल रखा करें। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत से बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। तो डी

ओके जी सोना मुझे जाना ही तू अलाए छा अगते हो न खा अलावा अगर तुम भी पांच करीबी जनरल स्टोर से वनो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी वी अचो ठीक है जी कुछ आपके कमेंट्स ऊपर चले गए हैं क्योंकि काफी तेजी से ये ऊपर भागते जा रहे हैं दोस्त अली मल्ला हमें सुन रहे हैं ओके जी दोस्त अली मल्ला भाई वालेकुम अस्सलाम तांचो मोबतवान प्रोग्राम बुधो पया चाचा कहते हैं सिर लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा ओए चाचा हजार भाई कहते हैं कि हाँ सिस्टर जब आप किसी सॉन्ग के साथ पोएट्री रीड करती हो तो और भी प्यारी लगती है ये तो लेटेस्ट न्यूज है अच्छा हजार भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद जियो करे ओ ये बाबा जियो करे निदड़ी कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम हलुड़ी एडा दफा लिखी छो अस छोकरी निदा जो है सभी की कसर कटी छी सभी जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक निदा पांच मैसेज में लिखी छो है निदड़ी के कड़ी तवी फिक्र है अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर कर अना ती अगर कौन कर है हाँ जी ले फड़ मेरी बाह माइया मैं मिन्नता करा माइया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले माइया हाँ जी ख्याल ही ख्याल आ बाबा तरी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधायूं था समझंदा कयो अच्छा ये फराज डहरी भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का क्या कमाल का रिजल्ट मिला है ओ ये बाबा ओ ये ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा रहो और फहीम भाई भी कहते हैं कि सर लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम साई ना हाँ हाँ परवा कहती कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम से असा जो सिर लगे तवां जे करे आ पी हा बिल्कुल बिल्कुल और हजार भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड वाइट एच दोनों हां जी दोनों दोनों कदी कदी मुखा वाइट एच विसरी वेंदो पर तहां याद जा रहे छडींदा आयो अच्छा ही सजो महीनो जो है यानी कि पूरा मंथ थी वेंदो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में प्रोग्राम हों वरी असो नेक्स्ट मंथ में इंदी तो उनमें सागो तला डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटेश बिन्हीं प्रोडक्ट के बारे में तक बुधाई ठीक है सो हाली तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधी वो तबर पड़ी वे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केड़ी केड़ी खास गालू आज तक मिलंदी जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर

अच्छा ताड़ी हाणे त उॾामी वञे अहिड़ो आहे पहिरीं मां हाणे थी कॉमेंट ॾिसां न त पहिरीं खे उॾारियूं हा सम्झो था अच्छा दोस्त अली मल्हा भाई वालेकुम अस्सलाम तव्हांजो मोहबत आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया नदड़ी कहती कि हज़ार ख़त्म बि हो गया हा पापा हज़ार खुलियो कराए त मिंट ख़तम थी वेंदो आहे और अदर चए थो मूं वटि 500 आहिनि 500 बचा अथई हलड़ी और हज़ार भाई कहे अथई हा ॿ पंज 500 जा नोट खुलिया कराया आहिनि हज़ार इहो बि सही आहे निज़ाम भट्टी भाई कहते हीअं कि जी बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पंहिंजे खूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था सो मर्द बि लॻाए सघनि था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं मायूं बि लॻाए सघनि थियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे त जेके माण्हू वरी फेस वॉश जा शौक़ीन हूंदा आहिनि या वरी चवंदा त बाबा असां क्रीम न असां फेस वॉश लॻाईंदासीं त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए सघो था डी स्किन जो फेस वॉश बि सफ़ा मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिलंदो सो तव्हां वञो ऐं वठी अचो ओके जी ॾाढो भलो असां गानो ॿुधोसीं फ़ाइज़ा जी आवाज़ में हुयो हीउ वारो गानो ॿुधंदासीं ज़ामिन जी आवाज़ में लैला लैला लैला ओ वेली भलो गानो आहे छो त ॿुधूंसि

आज मेरा मूड था कि कोई सैडी और कोई स्लो सा गाना नहीं लगाएंगे प्रोग्राम में, तो इसी वजह से बस गाने अच्छे अच्छे लगाए हैं। और रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। मौला अली सलामत कहते हैं, बहना कैसी हो, शो नाइस है, सॉन्ग सुनाए। तमाजा गाना तो कड़ी कड़ी मुझे समझ में ना ही नींदा। सो रमजान भाई आज मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुध पाया। निजाम भट्टी ना की प्रोग्राम बने पे, थैंक यू। अच्छा कामरान भाई कहते हैं कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सीक्रेट, हाँ जी तुम्हारी खूबसूरती जो सीक्रेट आए तमाम भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करो एंड नेचुरली खूबसूरत थी वजह। अली शेर बिरोही कहते हैं, सिद्रा सिस मैंने आपका शो 10 लोगों को शेयर किया है, अब मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करें। हाँ जी चलिए गाना ये एंजॉय की।

अच्छा मरियाम कहते हैं तबीयत सही है अब जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मजे में और हमारे साथ ये जनाब कहती है शो इज लश पश अरे तव्हां पुछो आहे रुखसार कॾहिं ईंदी रुखसार सुभाणे प्रोग्राम कंदी सुभाणे रुखसार जो प्रोग्राम थींदो सही आहे

न बाबा न चार्जर चाहे तो क्रीम जो मसाज तो लाजमी न मसाज न कर जो जड़ी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो ना तो उनके आराम सा प्यारन प्यारन हल्कन हल्कन आंगरन सा लगायो ये लगायो तो क्रीम थोड़ी थोड़ी तुम्हारे चेहरे से नजर अचे मसाज न कंदा कर ठीक है खास कर नाइट क्रीम जो तुम लगाया था उन मसाज बिल्कुल भी न कंदा कर जी मसाज कंदा न तो थोड़ो मामलो खराब थी सके तो सो मसाज न कंदा कर मसाज सिर्फ फेशियल में कबो है ही तक फेशियल वो रिजल्ट दी पर फेशियल ना है सो ये टू इन वन फार्मूलो है फेशियल जो इन अंदर यानी कि फेशियल जो चीजों एडे थियल पर ही बाज़ार नाइट क्रीम है।

हाँ जी बिल्कुल, देश की ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद। अच्छा नूर फातिमा, तुम्हें लाइक एडो गानो चयो हो सुनी तारिक हुसैन लोहर भागी मर्सद मौजूद है, बहुत शुक्रिया। निधि कहती कि हाँ ना लोगों को लिखना नहीं आता, आई थिंक इसीलिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने लिख दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा नूर फातिमा कहती है कि हानी मेरी खाला भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करती है, खाला भी करती है तो अब आप भी यूज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। निधि कहती है सलाम टू साइमा मीर, उसको बोलो कब तक मैसेज करोगी, पोस्ट पर आओ धमाका करते हम। साइमा मीर जो है ना अन्य ताई वो बटन वालों मोबाइल हिलाई दिया। साइमा मीर फेसबुक थी ना ही। महबूब अली मोरो सिटी से मेरे साथ मौजूद है, महबूब भाई वेलकम। जामिन अली शादी ते भी इंदो आहे छा? हाँ पर सब सिंगर इंदा है, जामिन भी इंदो हूँ, सही गाल है। अच्छा मंसूर हुसैन अंसारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम इन खुशामदीद। मोहम्मद जमान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा टॉपिक का जवाब बता देते हैं, तो सवाल जो मैंने आज किया था वो क्या है, जिसका पेट भरा हुआ होता है फिर भी वो खाती जाती है, तो उसका जवाब जो था वो आग था। और मुझे नहीं याद आ रहा कि सबसे पहले जवाब किसने दिया था, तो बस वो पांजी भर में खुश थी बने, तो यस आई एम विनर। हाँ जी बिल्कुल, सभी लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अमानुल्लाह महर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। निधि कहती है जारू की दादी है ना उसको बोलते हैं दद्दा। हाँ जी पता नहीं वो ड्रामे में है ना उसको बोलते हैं, और मेरी छोटी भांजी बोलती है दद्दा दद्दा। तो बस मैं जब भी वो दद्दा सुनती हूँ तो मुझे मेरी भांजी याद आ जाती है। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत। रसूल बख्श बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम। और बस हाने बस क्यों चुप क्यों, पोस्ट के लाइक और शेयर करे छजो। सो वरी तहां सा मिलू था 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो पांजो ओई रुसो रुखो याद रखना, आई जी जी अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कोन कयो आहे बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, आई मिलू था 5 बजे, पांजो ओई रुसो रुखो याद रखना। मोकलानी नाही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं भड़के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करण जी हिम्मत ही ना है, 4 अक्टूबर ते ब्लॉक मार्च न थींदो, मार्च हणो हुजे हा त 27 सेप्टेम्बर ते ही थी वञे हा। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपी में दहशतगर्दी खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में ना है, डायलॉग हणण सां कुझ न थींदो, कम करणो पवंदो। वज़ीर-ए-आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार तहरीक-ए-इंसाफ़ खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। राणा सनाउला चयो आहे त हर मसइले जो हल हूंदो आहे, तंहिं करे लांग मार्च ख़तम करियो ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ अचो। गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी समेत ॻाल्हियुनि जो बि ऑप्शन मौजूदु आहे, 4 अक्टूबर ते पीटीआई ताक़त जो इस्तेमाल कयो त कंहिं आइनी ऑप्शन तरफ़ वञणो पवंदो। वज़ीर-ए-आज़म मुख़ालिफ़ दुर्गवान खे मुलाक़ात लाइ ख़त लिखियो आहे, भले बैरिस्टर गौर खे बि गॾु वठी अचे, मुलाक़ात थी वेंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारां लंडन स्टॉक जो दौरो, ओपन मार्केट जे तकरीब में शिरकत। तकरीब खे ख़िताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मईशत खे मज़बूत करण लाइ घणो कम कयो आहे, मईशत जे माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम करे रहिया आहियूं। पाकिस्तान जी अमुन वारी ख़्वाहिशुनि खे कमज़ोरी न समझो वञे, अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुब समा वारो वज़ीर अताउला तार चयो आहे त अफ़गान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्दी वारे माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूदु आहिनि, अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसदाणे सोच जो नतीजो आहिनि, अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली घटिताई, पेट्रोल 1.49 रुपया ऐं डीज़ल 2.73 रुपया फी लीटर सस्तो, पेट्रोल जो नोग 387.54 रुपया ऐं डीज़ल जो नोग 402.24 रुपया थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 3 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि पुलिस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जे गॾियल मनसूबे बाबति इजलास, नाड़े रथाबंदी वारनि खातनि खे मनसूबे जी तकनीकी ऐं मालियाती जांच जल्द मुकमल करण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो त मुस्तक़िल जे चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस खे जदीद टेक्नोलॉजी सां जोड़ियो वञे।
2: आज पाकिस्तान की तमाम सियासत एक टॉपिक पर डिस्कस कर रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क्याम। आज पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि आपको नए इंतजामी यूनिट्स पे जाना होगा। अमेंडमेंट 18वीं करनी के बाद वो शायद लोगों को, शायद यह कंफर्म बात है, वो लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो गया। 2026 में हम खड़े हैं और 2026 में मेरा आपका शहर, कि मैं नहीं कह रहा बैन अल अक्वामी गरीबे कह रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा और चौथा पत्थर ही रहने वाला शहरों में शुमार होने लगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कयाम पर और कहीं पर सूबों के कयाम पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 साल बाद पाकिस्तान को हमारी बात आखिरकार समझ आ ही गई कि आपको ऑल्टरनेट पे जाना होगा, मौजूदा जो गवर्नेंस मॉडल है उसको चेंज करना होगा। कहने को हम जमहूरी मुल्क हैं और इस जमहूरी मुल्क में जमहूर ही एम्पावर नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी जमहूरियत का क्या भाई अचार डालना है। अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान के कर्ता धरता है सेंस प्रिवेल करे उनमें और लोगों को जमहूर को फैसिलिटेट करने में, सहूलत देने में ये निजाम अपना हिस्सा डाल सके, अपना किरदार अदा कर सके। मेरी दुआ।
1: अरिड़हीं तरमीम नाकाम थी वई आहे, नवां इंतज़ामी यूनिट 78 आहिनि। सिंध में मंडो निज़ाम में 50 में वन वुमेन शो हली रहियो आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शेदी चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम को लाभ न ॾेई सघे आहे, नवनि निज़ामी यूनिट्स तरफ़ वञणो पवंदो, हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को

मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003885।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बुनियाद ये है कि उन्हें रिहाई चाहिए अपने लीडर की. हमने बारहा कहा है कि उसका फोरम अदालतें हैं, हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है. जुडिशियल प्रोसेसेस के होते हुए आप कहें कि जी जलसे जुलूस से, एहतजाज से, शहरों पे चढ़ाई करके आपने ताकत का इस्तेमाल करके वो मकसद हासिल करने जो कि नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन.
4: हुकूमत पीटीआई से गालियों का कदम भी इनकार ना कयो. पीटीआई गालियों में लीडर की आजादी चाहे थी केतरा ही भेरा बुधाए चुका आयो तो बानी की आजादी हुकूमत से न पर अदलिया से गंढियल है. कानून वाले वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर ताड़ पीटीआई के संजीदा गालियों जो मशवरो डींदे है तो गालियों के बानी की आजादी से मशरूत करण वो अमल ठीक न है. ये चाहन था तो जलसन जुलूसन जरिए बानी के आजाद कराएं जो मुमकिन ना है. सुप्रीम कोर्ट बानी की चकास जो हुकुम दिनो हो जो थी वो हुकुम ते अमल में खोट आए तो अदालत के दिसनो आए जलसन जुलूसन से कुछ न थिंदो.
5: ज्यादा लोग होंगे. अभी इसमें दूसरी बात यह है कि कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई, मुल्क के हालात जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की गई तो पब्लिक का रिस्पांस आएगा और फिर जो है किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी. खैबर पख्तूनख्वा वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जहां पर आवामी मैंडेट से मुंतखिब शुदा हुकूमत आई है, किसी के कंधों पर बेसाखियों पर नहीं आई, अपने जोर बाजू से आवाम की ताकत से आई है. बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे या रीजन में या वफाक में आवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है. यहां पर किसी गलती का सोचना भी नहीं क्योंकि आवाम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे और आवाम जो है जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने अपने मैंडेट की हिफाजत की थी इस तरह अपनी हुकूमत की भी हिफाजत करेंगे.
4: कोविड वजर करण की कोशिश कई वही तवाम जो सख्त रद अमल कंखे बसर लिकाण की जगह न मिली. केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी खबरदार कर छो. सुहेल आफरीदी है तो केपी में गलती जो केर भी न सोचे. केपी की मैंडेट की हिफाजत कदड़ आवाम पंजे हुकूमत की भी हिफाजत कंदो. तारीख में 4 अक्टूबर वो लॉन्ग मार्च सब का वो लॉन्ग मार्च साबित का धमकी मकसद तो थी हटा सकते.

0: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं भर के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करण की हिम्मत ही ना है, 4 अक्टूबर से ब्लॉक मार्च न थो, मार्च छण हो तो 27 सितंबर से ही थी वे। केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो केपी में दहशतगर्दी के कंट्रोल कर पीटीआई के वस में ना है, ताला घरण से कुछ न थो, कम करणो पवो। वजीर आजम के सियासी मामलों वाले सलाहकार तहरीक इंसाफ के गाल दावत दई छी, राणा सनाउला है हर मसले जो हल होंद है, तेरे लॉन्ग मार्च खत्म कर गाल तरफ अचो, गवर्नर राज एमरजेंसी समेत गाल ऑप्शन मौजूद है, 4 अक्टूबर से पीटीआई ताकत जो इस्तेमाल किया कें आईन ऑप्शन तरफ वनो पवो। वजीर आजम मुखालिफ दुर्गवान के मुलाकात लाय खत लिखो है, भले बैरिस्टर गौर के भी गड वी अचे, मुलाकात थी वी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा लंडन स्टॉक जो दौर ओपन मार्केट के तकरीब में शिरकत, शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान मैशियत के मजबूत करने लाए घणो कम कयो आए, मैशियत के माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम कर रहा हूं, कमजोरी न समझता थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब दिनो वेंदो। सुब समा वारो वजीर अताउला तार चयो आए तो अफगान तालिबान रिजीम वारे माइंड सेट मां निकरणो पवंदो, अफगानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूद आहिनि, अफगानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसदाणे सोच जो नतीजो आहिनि, अफगान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। पेट्रोलियम शयुनि लाइ डीज़ल सस्तो, पेट्रोल जो नोग 354 पैसा ऐं डीज़ल जो नोग 402.24 रुपया थी वियो, पेट्रोलियम डिवीजन पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 3 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि पुलिस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जे गॾियल मनसूबे बाबति इजलास, नाड़े रथाबंदी वारनि खातनि खे मनसूबे जी तकनीकी ऐं मालियाती जाच जल्द मुकमल करण जी हिदायत, मुराद अली शाह चयो त मुस्तक़िल जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस खे जदीद टेक्नोलॉजी सां जोड़ियो वञे।
2: आज पाकिस्तान की तमाम सियासत एक टॉपिक पर डिस्कस कर रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का कयाम, और पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि आपको नए इंतजामी यूनिट्स पे जाना होगा। अमेंडमेंट 18वीं करनी के बाद वो शायद लोगों को, शायद यह कंफर्म बात है, वो लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो गया। 2026 में हम खड़े हैं और 2026 में मेरा आपका शहर, कि मैं नहीं कह रहा बैन अल अक्वामी गरीबे कह रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा और चौथा पत्थर ही रहने वाला शहरों में शुमार होने लगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कयाम पर और कहीं पर सूबों के कयाम पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 साल बाद पाकिस्तान को हमारी बात आखिरकार समझ आ ही गई कि

0: को ऑल्टरनेट पे जाना होगा, मौजूदा जो गवर्नेंस मॉडल है उसको चेंज करना होगा। कहने को हम जमहूरी मुल्क हैं और इस जमहूरी मुल्क में जमहूर ही एम्पावर नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी जमहूरियत का क्या भाई अचार डालना है हमें। अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान के कर्ता धरता है सेंस प्रिवेल करे उनमें और लोगों को जमहूर को फैसिलिटेट करने में, सहूलत देने में ये निजाम अपना हिस्सा डाल सके, अपना किरदार अदा कर सके। मेरी दुआ।
1: हणीतर में नाकाम थी वही आए नवा इंतजामी यूनिट हटर आन सिंध में मंडो निजाम में पंजाब में वन वुमेन शो हली रो है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शेदी तरड़ी तरमियम को लाभ न दई सके आए। नव इंतजामी यूनिट तरफ वनो पवन हुकूमत निजाम वारो मॉडल हाँ तब्दील थे घुर्जे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3101-09, 03000-3105109।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: शबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-335-69।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबर, बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: चेहरे जो रंग सांवरो फट वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज राउटर 151
1: चेक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस हिलजो पुत ऐं मां अख़्तियार प्लेयर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सां मोटरसाइकिल होंडा कमाम जेन्युइन स्पेयर सुसी रियाज ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी कंप्यूटर स्टेचिंग मशीन जहिड़ी मोटरसाइकिल जी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर लाइन आसिम हुसैन आरा 3073592।
2: खुश खबरी चमक आई रोज के खर्च का बचो A1 बिल्डिंग मेहरापुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक करियो स्पेयर जी सहु गड सिंध गडो गड A1 ऑटो

0: थरी रोड मेहराबच टू ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं सीएनजी रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुश 0302-3295-894 ऐतमाद जो।
1: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा कारोबारी इश्तिहारात मिला साल रक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आप कहें कि जी जलसे जुलूस से एहतजाज से शहरों पे चढ़ाई करके आपने ताकत का इस्तेमाल करके वो मकसद हासिल करने जो कि नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन.
4: हुकूमत पीटीआई से गालियों का कदम भी इनकार ना कयो. पीटीआई गालियों में लीडर की आजादी चाहे थी केतरा ही भेरा बुधा चुका आयू तो बानी की आजादी हुकूमत से न पर अदलिया से गंढियल है. कानून वाले वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर ताड़ पीटीआई के संजीदा गालियों जो मशवरो डींदे है तो गालियों के बानी की आजादी से मशरूत करण वो अमल ठीक ना है. ये चाहन था तो जलसन जुलूसन जरिए बानी के आजाद कराइन जो मुमकिन ना है. सुप्रीम कोर्ट बानी की चकास जो हुक्म दिनो हो जो थी वो हुक्म ते अमल में खोट आए तो अदालत के दिसनो आए जलसन जुलूसन से कुछ न थींदो.
5: ज्यादा लोग होंगे. अभी इसमें दूसरी बात यह है कि कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई, मुल्क के हालात जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की गई तो पब्लिक का रिस्पांस आएगा और फिर जो है किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी. खैबर पख्तूनख्वा वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जहां पर आवामी मैंडेट से मुंतखिब शुदा हुकूमत आई है. किसी के कंधों पर बेसाखियों पर नहीं आई, अपने जोर बाजू से आवाम की ताकत से आई है. बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे या रीजन में या वफाक में आवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है. यहां पर किसी गलती का सोचना भी नहीं क्योंकि आवाम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे और आवाम जो है जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने अपने मैंडेट की हिफाजत की थी इस तरह अपनी हुकूमत की भी हिफाजत करेंगे.
4: कोविड वजर करण की कोशिश कई वही तमाम जो सख्त रद अमल कंखे बसर लिकायण की जगह न मिली. केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी खबरदार कर छो. सुहेल आफरीदी है तो केपी में गलती जो केर भी न सोचे. केपी की मैंडेट की हिफाजत कदड़ आवाम पंजे हुकूमत की भी हिफाजत कद. तारीख में 4 अक्टूबर वो लॉन्ग मार्च सब का वो लॉन्ग मार्च साबित का धमकी मकसद तक न थी हटा सकते.

0: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़ के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की हो तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करण जी हिम्मत ही ना है, 4 अक्टूबर ते ब्लॉक मार्च न थींदो, मार्च हणो हुजे हा त 27 सितंबर ते ही थी वञे हा। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपी में दहशतगर्दी के कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में ना है, डायलॉग हणण सां कुझ न थींदो, कम करणो पवंदो। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार तहरीक इंसाफ खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। राणा सनाउला चयो आहे त हर मसइले जो हल हूंदो आहे, तंहिं करे लांग मार्च ख़तमु करियो ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ अचो। गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी समेत ॻाल्हियुनि जो बि ऑप्शन मौजूदु आहे, 4 अक्टूबर ते पीटीआई ताक़त जो इस्तेमाल कयो त कंहिं आइनी ऑप्शन तरफ़ वञणो पवंदो। वज़ीर आज़म मुख़ालिफ़ दुर्गवान खे मुलाक़ात लाइ ख़त लिखियो आहे, भले बैरिस्टर गौर खे बि गॾु वठी अचे, मुलाक़ात थी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां लंडन स्टॉक जो दौरो, ओपन मार्केट जे तकरीब में शिरकत। तकरीब खे ख़िताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मईशत खे मज़बूत करण लाइ घणो कम कयो आहे, मईशत जे माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम करे रहिया आहियूं। पाकिस्तान जी अमुन वारी ख़्वाहिशुनि खे कमज़ोरी न

0: सम्झो वञे। अफ़गान सदर में इंतिहा थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुब समा वारो वज़ीर अताउला तार चयो आहे त अफ़गान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्दी वारे माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूदु आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणे सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली घटि आहे। पेट्रोल 1.49 रुपया ऐं डीज़ल 2.73 रुपया फ़ी लीटर सस्तो। पेट्रोल जो नोग 387.54 रुपया ऐं डीज़ल जो नोग 402.24 रुपया थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 3 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूदु आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो।
3: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप 2.5, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014531456 ऐं तौकीर अहमद 03601623793।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
6: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
8: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003855569
9: अस्सलाम वालेकुम अदा
10: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
10: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 03013992836
12: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए

0: मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराब पर 03003385569। मेहराब पर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 03013803847
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: News. अफरीदी लॉन्ग मार्च करे न सकंदो का भी परेशानी ना है.
4: होगी ना वो होगा गवर्नर रूल यही रूट है और क्या रूट है अनलेस के कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है खान का मैंडेट चलता है खान के डायरेक्शन चलते हैं किसी और के कहने से कुछ नहीं
3: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आहे सुहेल अफरीदी के बानी ऐं पार्टी जी हिमायत हासिल आहे केपी में नए मर्डन से लॻंदी ऐं नई गवर्नर आज लॻंदो इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी आहे लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ई आहे केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी से गवर्नर राज लगी सके तो वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आइन मूजिब मुशवरो दिनो वो केपी में गवर्नर राज आइन का मथाहू न हों पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नैयर हुसैन बुखारी है तो केपी में अमन अमान की सूरत हाल इंतई खराब है पीटीआई के भी रिलीफ मज़ामत से न पर अदलिया में मिल पीटीआई जो रवैयो सुठो ना रो एहतजाज के नाले से शहर से हमलो कर कबूल जोगो ना ईरान की सूरतहाल घनी खराब है हथियार पिटा कंदा या न खबर ना है जेस ताई मां यहां उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो वाशिंगटन में मीडिया से गालाइंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त समूरी दुनिया में वाहिद मां शख्स आया जो किम जोंग उन के पसंद कंदो आया ऐं हू मुझो बेहतरीन दोस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की बरतरी बरकरार है जेका बरकरार ही रहंदी निगरानी लाइ कमेटी भी जोड़े रहा आहियूं ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची तजवीज़नि ते अमरीकी जवाब मिलण जी तसदीक करे छॾी ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान फातिमा महाजरानी चयो आहे त अब्बास अराग़ची अमरीका जवाब खां काबीना खे आगाह कयो आहे अमरीकी तजवीज़ ख़िते में जारी जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां आहे

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 03000 310 5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी एड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जीअं मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
4: 03019-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभ खां वॾी नेमत सिहत आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। सभु खां पहिरीं त असां डॉक्टर साहिब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहिब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहिब कीअं आहियो? त बसि ठीकु आहे
1: जी, साईं अलाह ताला जा शुक्र।

ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा टे ॾींहं जुमो छंछरु आचरु चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में बेज़रिया लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301 196 851।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬੀ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਅਜਾਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
1: ਅਜਾਦ ਥੋੜਾ ਅਰਜ਼ ਆ।
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਯੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਓ, ਮਾਨੀ ਖਾਵਾਂ ਥੋ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਥੀ ਤੇ ਪੋ ਛਿਕੂ ਬਚਨ ਥਿਉ ਐ ਬਲਗਮ ਬਚੇ ਥੋ।
0: ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਕਿਤਰੀ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਜੀ?
1: ਉਮਰ ਮਜਾ ਬਾਲ 70 ਸਾਲ ਆ।
0: ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਂ ਕੇ ਬੁਧਾਇ ਥੋ ਰੇਡੀਓ ਬੁਧੋ। ਜੀ ਸਰ।
2: ਜੀ ਸਰ। चाचे की जी एक तो उम्र जो है सो माशाला सुठी है, उन चाचे सिर्फ यही बुधा तो मानी खाए तो एलर्जी थे या मानी खाने से या कोई का शेख सणबी वगैरह या खट्टी वगैरह शे खाने से तकलीफ थे थी तो रूबरू उन खोले को बुधा तो चाचे को यो चाहिए तो रूबरू दिखारे वजन तो उनका पुछी कर उनकी दवा दींदी इनशाला तला बिल्कुल सही थी।
0: प्रोग्राम आए सेज गाल ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु। प्रोग्राम हिकु ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं।

0: सर साहब लगे तो कॉल ड्राप थी चुकी है।
1: आ दोस्तों के यूअर्स कंदासी तो थोड़ो बाहर निकरी करे ना जते एरिया हो जे खुलल हो जे नेटवर्क सही हो जे तो उता भी गले
0: बिल्कुल सर। एक बी कॉल जी तरफ नासी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे रेडियो सेट ऑफ कर जो
0: रेडियो सेट अदा पहरे बंद कर जो।
2: जी जी
0: जी शाह पूछन चाहिए डॉक्टर साहब का
2: घर पे
1: या अरे कॉल ड्रॉप कर बाबू जी कॉल ड्रॉप कर।
0: सर असा लिसनर्स के पेरा भी चवंदा आयो त जदे भी कॉल कियो तवा त सब का पेरा वीडियो बंद कर
1: टाइम खराब करनो दो है पेरा भी चला है त कॉल जदे तवा कयो त रेडियो सेट ऑफ करे पोई कंदा के।
0: बिल्कुल सर।
1: जी सर।
0: प्रोग्राम में एक बी कॉल जी तरफ नलासी अस्सलाम वालेकुम। जी अदा छा पूछना चाहिए डॉक्टर साहब का
2: सर एलर्जी के बारे में पूछना चाहिए डॉक्टर साहब जी हॉस्पिटल ते भी व्यास है पर बच्चे कर व्यास बंद हुई है असन नंदड़ी अचान सतन महीने जी उनके तमाम घनी खारिश आई एलर्जी है और नहीं छे।
0: जी जी
1: कदे आया होता बाबा हेलो।
2: जी जी सर
1: अदा के दिखा रहे हो कदे दिखा रहे हो बाबा

0: ॾेखारिया आहियो क्लिनिक बंद हुई। हा त सुभाणे सुभाणे क्लिनिक ते हूंदासीं, तव्हां रूबरू ते ॾेखारे वञो। ओके, अलाह
1: सर। इन करे बार बार असां एड्रेस ऐं टाइम तव्हांजो रिपीट कंदा आहियूं त
0: को पेशेंट आहे त मां पहिरियां ॻाल्हि कई त असांजे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि। मिसाल अंगारे जो ॾींहुं त साईं असां क्लिनिक ते बीठा आहियूं, अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे। बाक़ी टाइमिंग जे हवाले सां ॿियनि ॾींहंनि में टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां ठीकु आहे, कॾहिं लेट सवेल थी बि वेंदी आहे कलाक अधु, लेकिन जेको टाइम हूंदो आहे, जेको ॾींहुं रखियलु हूंदो आहे, उहो ॾींहुं असांजो कॾहिं बि मिस न थींदो आहे। नंबर तव्हां वटि मौजूदु आहिनि पेशंट खे, जेकॾहिं देरि बि थींदी आहे त को बि पेशंट असां सां टचिंग में हूंदो आहे, कॉन्टेक्ट में हूंदो आहे, उते बोर्ड ते नंबर लिखियलु आहे त उहो पुछी करे पोइ जेको आहे सो उते इवेट करे वेंदा आहिनि ऐं उहे दवा वठी वेंदा आहिनि। इन जे करे अधे खे बि इहो ई चवंदासीं त तव्हां जेको आहे सो रूबरू ॾेखारे सघो था ऐं टाइमिंग तव्हां ज़रूरु जेको आहे सो नोट कजो, ऐं ॾींहं अव्हांजे नोटेज में हुजनि।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9896-8051। ऐं डॉक्टर साहब जो इहो साॻियो ई कॉन्टेक्ट नंबर आहे, हिन ते तव्हां कंहिं बि वक़्तु कॉन्टेक्ट करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था।

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851।

0: प्रोग्राम में हिकु लाइव कॉल जी तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा केरे किथां खां?
1: सर फकीराबाद खां था ॻाल्हायूं।
0: जी जा, छा पुछण था हिन डॉक्टर साहब खां?
1: सर पहिरियों माथे में तकलीफ़ हुई, माथे में दवा वरिती हुई।
0: जी जी।
1: हाणे कमज़ोरी रहे थी जिस्म में सर।
0: अच्छा, किथां वरिती दवा?
1: साईं वरिती आहे गंभट मां सर।
0: अच्छा,
1: हाणे तबियत माना सही थी आहे। हाणे माना जंगनि में सहाई बि रहे थी, माना थकिजी थो पवां, माना हा में सोर बि पए थो।
0: जी जी, ठीकु आहे। डॉक्टर साहब अव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर,
2: बिल्कुलु। हिकिड़ी मादे जी कमज़ोरी थी वेंदी आहे, उन खां पोइ ऐसा बि कमज़ोरी थी वेंदी आहे। हिकु त सौंफ़ हर खाधे खां पोइ, मां हर मरीज़ खे ॿुधाईंदो आहियां, हर खाधे खां पोइ सौंफ़ जी चपटी जेको आहे सो वात में विझी छॾे माण्हू, उहा काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदे वारी आहे। उहा उनजी ऐसा बि कमज़ोरी बि दूरि कंदी आहे त मादो बि सही कंदी आहे। या उनखां अलावा अदपा बादाम, अदपा सौंफ़, अदपा मिसरी पाण में सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइण सां काफ़ी हद तक फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। लेकिन अञा बि कमज़ोरी घणी आहे त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि। उन्हनि जी दवा थींदी आहे होम्योपैथिक में, जेकी हर लिहाज़ सां बहितर हूंदी आहे। दवा ॾींदासीं, इनशाला ताला ठीकु थींदो।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुंज रग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि में जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी रोड, मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592121

0: 0।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: सी ओ की ना वो गवर्नर रूल होगा, यही रूट है और क्या रूट है, अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को, खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है, खान का मैंडेट चलता है, खान की डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई है सुहेल अफरीदी के बानी पार्टी की हिमायत हासिल है, केपीए में न इमरजेंसी लगंदी नई वरी गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालाइंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो तो डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी है, लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ही है।
2: पीटी में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और सूबाई हुकूमत की उसे कंट्रोल करने में अदम दिलचस्पी और नाकामी वो वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी के लिफाज की बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें यकीन ताउन करेगी।
3: मुझे अभी भी लगता है कि ये अब सियासी तौर पे बहुत कमजोर किस तरीके से वो अली अमीन गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे, मुख्तलिफ हल्का बात से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पे सुहेल खान अफरीदी के पास ये शक्त है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक है।
1: पीटीआई वारा सियासी तौर से घणो कमजोर थी वया आहन, लॉन्ग मार्च करे न सकंदा। सुदसमा वफाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे तो सुहेल अफरीदी जैं तरीके से अली अमीन गंडापुर वट वयो सभिनी जे सामू आहे। पीपल्स पार्टी जे नैर बुखारी चयो तो सूबाई हुकूमत जी नाकामी ते गवर्नर राज लगी सके तो। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई ता आइन मूजिब मशवरो डिनो वेंदो, केपीए में गवर्नर राज आइन खां मथां न हूंदो। ईरान की सूरत हाल घनी खराब है, हथियार फिटा कंदा या न खबर ना है, जेस ताईं मां आया उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया से गालाइंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आया जेको किम जोंग उन के पसंद कंदो आया हूँ, मुझो बेहतरीन दोस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका की बरतरी बरकरार है, जेका बरकरारी रहंदी, निगरानी लाए कमेटी भी जोड़े रहा आयूं। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राकची की सालिस मुल्क कतर के नुमाइंदन से मुलाकात, कतरी सालिस ईरानी तजवीजन ते अमरीकी जवाब अब्बास राकची हवाले कयो। अब्बास राकची अमरीकी जवाब ते ईरानी क्यादत से मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सरबराह मोहसन रजाई चयो है त ट्रंप दलदल में फांसी पयो है, ईरानी तजवीजू अमरीका वट पहुंची वयू आहिन, फैसलो ट्रंप के करणो है, ईरान कहें भी सूरत में हथियार फिटा न कंदो। आलमी मुआदन के एक तरफो खत्म या मुअतल नथो करे सकजे, तय थे मुआदन ते अमल करण भी लाजिम हुंदो आहे। सिंतास मुआदे बाबत आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के हक में फैसलो दे चुकी। सुद समा वारे फाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे तो सिंतास मुआदे के खत्म तोड़े मुअतल नथो करे सकजे, पाकिस्तान सिंतास मुआदे की तहफुज लाए घुर्बल कदम खणण लाए तैयार आहे, पाकिस्तान पंजे पानी के हिस्से ते को भी ठाह न कंदो, सिंतास मुआदो पाकिस्तानन जी बका जो मसलो आहे। सूबन वारन गालन ते ध्यान न देन घुर्जे, नई परेशान थन घुर्जे, मोहसन नकवी जी सदर आसिफ जरदारी सा का मुलाकात नाहे थी, मुलाकात वारु गालियो मफरूजा आहन, गलत खबर सब बदनामी थी थी, गलत खबरन के किन रोकजे, सहाफी मशवरा देन। कराची प्रेस क्लब में सहाफन सा गालंदे शर्जील मेहमद चयो त नवन सूबन बाबत पीपल्स पार्टी जी पॉलिसी वाजे आहे, सिंध असेंबली पे फैसलो अग देई चुकी हुई, हाने गोड़ थयो त वरी पे फैसलो बुधाय छडियो आहे, पाकिस्तान दहशतगर्दी जो शिकार रो है, लॉन्ग मार्च कें मकसद लाए कया वा पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो संदन बानी के आजाद कराण है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारजी वया हथियार हथ, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मीर अली में फोर्सिस के ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारा वया, टांक में पटवार खाने के टारगेट करण की भी कोशिश नाकाम, पहंजो ही बम फाटन सबब एक दहशतगर्द मारजी वयो। बलोचिस्तान के सोराब जिले में भी फोर्सिस की हिंदुस्तानी फितने खिलाफ कामयाब कार्रवाई, एक दहशतगर्द मारजी वयो। घरू वजीर मोहसन नकवी पारा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस के भेटा पेश, मोहसन नकवी चयो त दहशतगर्दन की खात्मे तई ऑपरेशन जारी रहंदा।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایں فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि हर जुमे छंछरु ऐं आचर

0: सो एक वंजा।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

रखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, और मेहरापुर 03000310509, 03003105109। हर नजर

ओके जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03009319667। और इस टाइम मैं अकेला नहीं हूँ, आपको हमारे साथ रहने वाला है पूरा पूरा 9 बजे तक। मेरे साथ आरजे आबिद चौहान मौजूद है, जो कि शायर शायरी का भी भाई मुकाबला होगा यहाँ पर, और आपकी लाइफ कॉल्स भी शामिल करेंगे।

और जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है, जीए मेहरा फॉर एफएम 90.4 के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो। मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ आपसे मुखातिब आपका मेजबान आरजे शहबाज बुखारी।

0: جی دوستوں ونس اگین ویلکم بیک بھلی کار خوش آمدید جی ہیں وشاد کے اور بخیر راگلے پروگرام پہنچے وقت ڈاں ودھی رہے ہوا ہے آخری لاسٹ 10 منٹن کوشش کندا سے تے ہکت کالر اساں سان شامل تھی سگے کالر لائن دے موجود آ ہے پر یو موجود ہی رہندو چھا گھن تو تھوڑو ٹیکنیکلی پرابلم آ ہے سو ان کرے اساں گل بول کندا سے جی شاہ صاحب اواں ذکر پے کیو سوہ جو بیوٹی جو ائے جو تو پہنجی پروڈکٹ جو پہنجی پروڈکٹ دے حوالے سان اساں جو جے پروڈکٹس ہیں وہ ان میں ملک رائس بیوٹی کریم آ ہے ملک رائس بیوٹی سوپ آ ہے ملک رائس ایکنی کریم آ ہے وائٹمن سی جو ما کدے کرے تذکرہ کیو ہے کافی بھرا جو تو رہ جی ویندو وائٹمن سی جے کا پراپرلی وہ مطلب کیڑے کم جی آ ہے ان دے حوالے سان تھوڑو بدھائے
1: अच्छा जी ॾिसो अॼुकल्ह काफ़ी सारा न ट्रेंड हली वियो आहे त हींअर काफ़ी मार्केट्स जे अंदरि एॾी सारी ब्यूटी क्रीम्स अची वियूं आहिनि हर ब्यूटी क्रीम जो पंहिंजो हिकु रिज़ल्ट आहे अच्छा विटामिन सी जीअं मिसाल जे तौर ते तव्हांखे ख़बर अथव विटामिन सी कॾहिं कॾहिं थींदो यार तव्हांखे न विटामिन सी जी कमी आहे या तव्हांखे छा बाबा तव्हां ताक़त वारी शयूं इस्तेमालु कयो तव्हांजी ग्रोथ वधे तव्हांखे ब्लड जी कमी आहे विटामिन सी जी कमी आहे त हे विटामिन सी स्किन खे ग्रोथ कंदो आहे स्किन खे यानी कि हुनजी जेके स्किन खे जज़्ब थियण खां पोइ सर्कुलेशन असांजी न थींदी आहे न थींदी आहे कॾहिं कॾहिं कुझु अहिड़ियूं ग़िज़ाऊं बि खाए करे न पोइ बि असांजी जिस्म में लॻंदी न हो ब्लड नयूं ठहंदियूं त विटामिन सी तव्हांजी स्किन जा इहे जेका तव्हां डॉट स्पॉट्स आहिनि जेका तव्हांजी स्किन जे अंदरि जेके जज़्ब करण वारी शयूं आहिनि उनखे हा उनखे ताक़त मिलंदी आहे अच्छा हिन खां पोइ विटामिन सी सां हिकु त हिन जे अंदरि इहा आहे की तव्हां स्किन जे मथां जीअं क्रीम इस्तेमालु कंदो तव्हांखे ठंडक महसूसु थींदी कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल तव्हांजो जीअं अॼुकल्ह पाउडर्स वग़ैरह ईंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ जा विटामिन सी सां तव्हांजी स्किन जे मथां जेका बि गरमाइश हूंदी उहा ख़तमु कंदी ठीकु आहे अक्सर तव्हां इहो ॾिसंदव की असां जेॾी महिल ब्लीच वग़ैरह स्किन पॉलिश इस्तेमालु कंदा आहियूं असांजी स्किन रेड थी वेंदी आहे छो त लिक्विड ऐं पाउडर कुझु ख़वातीन छा कंदियूं आहिनि पाउडर वधीक इन करे विझंदियूं आहिनि की असांजी स्किन मिंट गिलो करे ठीकु आहे असां ओतिरो केमिकल असां ओतिरो पाउडर इस्तेमालु कयूं जेतिरो असांजी स्किन बर्दाश्त करे सघे हीअ जेकी ब्यूटी क्रीम आहे विटामिन सी असांजी स्किन जा उहा जेका रेड यानी की रेड रेडलिश जेका निशान थींदा आहिनि न ॻाढ़ो ॻाढ़ोपण अची वेंदो आहे पास खां त ब्लड जो न हूंदो आहे उतां जी स्किन छड़ियल हूंदी आहे जेके तव्हां वधीक तव्हां हा बिल्कुलु तव्हां ॾिसो न बिल्कुलु स्किन पहिरें रेड थींदी आहे रेड खां पोइ कारोपण स्टार्ट थी वेंदो आहे उहो कारोपण तव्हांजा दॿा थी वेंदा आहिनि
0: रेशिस जेके आहिनि त उहे ॻाढ़े मां पोइ कारा थी वेंदा आहिनि दाग़ वरी ख़तमु ॾाढो देरि सां थींदा ॾाढो देरि उन्हनि जे लाइ जेका वाइटमिन
1: वाइटामिन अच्छा हुनखे पहिरियां त मां पंहिंजे ॾिणियुनि खे इहो चवंदुसि की तव्हां ऑलरेडी हिकिड़ी क्रीम जे अंदरि तमामु उहा अज़ाऊं शामिलु आहिनि वधीक तव्हां शामिलु करण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे हीअ त गरम मिसालो थी थो वञे तव्हांजी स्किन जो बेड़ो गर्क थी वेंदो कोशिशि कयो जेकी प्रॉपर क्रीम तव्हां यूज़ था कयो मां त पंहिंजे रिकमेंड कंदुमि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हांखे प्रॉपरली इस्तेमालु कयो जेकॾहिं अव्हांजी स्किन जे मथां
0: माज़रत ख़ान कथा कलम अदड़िन ते यादि आयो त असांजो जेको हिकिड़ो कॉलर हुयो हुननि ॿीहर रिकॉल हुननि कोन कई रीडायल हुसैन बख्तियाल साहब साईं नवाबी संगत उन्हनि जी नवाबी संगत जेका आहे उहो हिकिड़ो सोशल गैदरिंग ग्रुप आहे उन में उन्हनि जी हिकिड़ी कोआर्डिनेटर ग्रुप में उहा अदड़ी आहे सुंदस ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल पिणु मुंहिंजी थी उन्हनि खे असां इहो मैसेज जेको आहे त पहिरियों पहुचायोसीं त उहो प्रॉपरली अवां फीमेल्स में इन्वॉल्व आहिनि तमामु सुठी एक्टिविस्ट आहे ऐं असांजो अगरि जेकॾहिं उहे प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि नवाबी संगत जा दोस्त हिन महिल डेफिनेटली ॿुधी रहिया आहिनि त उन ॾींहुं ताईं पैगाम वन सगेन असांजो पहुचाईंदा त उहा उनजी अवेयरनेस हुते ॾींदी जॾहिं बि जिते की सोशल गैदरिंग्स थियनि त असांजे पैगाम खे अॻिते फॉरवर्ड कंदियूं
1: अच्छा जी ॾिसो जॾहिं बि असां वाज़ू कया त हाणे असांजी 29 तारीख़ ते हिकिड़ी ब्यूटिशन जी क्लास हुई जंहिंमें मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम असां हिकिड़ी लेडीज़ खे मां रिकमेंड कई अच्छा हुन में इहो हुयो की असां हैड जा जेका फेशियल्स वग़ैरह कंदा आहियूं बाज़ू कया ॾिसो न मक़सदु हिकिड़ो ई हूंदो आहे सभिनि जो ख़ासितौरु ख़वातीन ॾाढी सेंसिटिव हूंदी आहे लेडीज़ असांजी अदड़ियूं ॾाढी सेंसिटिव हूंदियूं आहिनि स्किन जे बारे में अच्छा कुझु स्किन न ॾाढी ग्लो कंदियूं आहिनि ख़ूबसूरत नज़र ईंदियूं आहिनि नेचुरल स्किन हूंदी आहे हू पंहिंजी स्किन जी केयर कंदा आहिनि तव्हांखे जेको प्रोडक्ट अगरि सुठो लॻी वियो आहे तव्हांजी स्किन जे मथां हिकिड़ो प्रोडक्ट रास अची वियो आहे तव्हां उन प्रोडक्ट खे चेंज न कयो तव्हां प्रॉपरली उहो प्रोडक्ट यूज़ कयो मां त इहो ई तव्हांखे चवंदुसि सभिनि खां पहिरियां तव्हां पंहिंजी ग़िज़ा में तब्दीली आणियो तव्हां नेरानमो जीअं मिसाल जीअं तव्हांजी एक्टिविटीज़ आहे गरम शयूं घटि खाओ फास्ट फूड घटि खाओ तव्हांजे मदे में गरमाइश थींदी उनजो इफ़ेक्ट तव्हांजी स्किन जे मथां पवंदो तव्हां पाणी वधि मां वधि पियो वॉक कयो ऐं तव्हां खीरु पियो फ्रूट खाओ ऐं कोशिशि कयो फास्ट फूड खां बहितर तव्हां कुझु फ्रेश जूस पियो जेको तव्हांजी स्किन जे मथां ग्लो अची वञे त मां लास्ट में छो तो हमें टाइम भी काफ़ी सारो थी चुको है हाँ सिर्फ छह मिनट हैं मां ड्रीन के बेहर ये चुंदुस कि ब्यूटी क्रीम जो हमेशा हर प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने जो तरीको हों जैसे मल इस्तेमाल करने तरीको प्रॉपर कि है तुम सुमन का पैर ब कलाक सुठे तरीके से फेस को वॉश कियो फेस वॉश कर स्किन के मथा जी भी सजरी की डस्ट पॉल्यूशन वो खत्म थी वेंदी स्किन के खुश्क करण का मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम तवे एतरी ना हणी कि बराबर वो घर जो भाती चवन कड़ी मखलूक अच्छी घर में तवे क्रीम बज़ाहिर सिर्फ महसूस थे कि अवन की स्किन के मथा ये क्रीम लगल है तव थप थप आयो स्किन के मथा वह क्रीम पूरी टिन डीन तवे एक्नी दाग धबा कील मासा तवजा खत्म थी वा तो हाँ सिर्फ टाइम मोकलानी जो अची वो जैसे तवे कड़ी भी शहर में कड़ी भी इलाके में मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सॉप मिल्क राइस विटामिन सी ब्यूटी क्रीम नी मिले तो तुम एक दफो मलिक जफर इकबाल साहब के हेल्पलाइन नंबर तुम कॉल किया इनशाला कोशिश कर नुमाइंदा वर्किंग कदा अवज हर नंढे वे जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइंदा 0300-310-5109 कॉल कर सको पसंदीदा एक सॉन्ग बुदा से आबिद भाई कड़ो सॉन्ग प्ले करण वाला हो तुम
0: थैंक यू लव यू शाह साहब जैसे पसंदीदा पुछो था तो मतलब मुझी पसंद पुछो था जैसे मुझी पसंद पुछो था तो अज तमाम सभी लिस्ट
1: अच्छा जी वेंदे वेंदे मां हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि की पंहिंजनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो जंहिंसां जेको बि वक़्तु गुज़ारियो सुठो गुज़ारियो ऐं जेकी गुज़ारियो पिया इन ज़िंदगी खां तव्हां पंहिंजो कॾहिं कॾहिं इंसान बेज़ारी जो इज़हार कंदो आहे ऐं मां इहो कोशिशि कंदुसि की इहो तव्हांखे इस्लाह जी ॻाल्हि कंदुमि की जहिड़ी ज़िंदगी खां तव्हां तंग आहियो अहिड़ी ई ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ अलाह जी बारगाह में हज़ारे माण्हू दुआऊं घुरंदा आहिनि ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ज़िंदगी रहियो साथ त कल वरी तव्हांजो साथ निभाईंदासीं ओके अलाह हाफ़िज़ अलाह निगेबान अलाह वाही

एक नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310519।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ। रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत आए सचाई, लबन ते मुरका विखरिल दिल में आ बेआई। चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ। कराची का कश्मीर किंझर का कारूंझर ताई सुहिणी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कुबुल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान आए अवां बुधी रहया हो GAFM नेटवर्क। GAFM नेटवर्क आए प्रोग्राम दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानायतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन प्रिय प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे, तू न ईंदे पक आपर, तू न ईंदे पक आपर, अख फरंदी थी रहे। तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे, तू न ईंदे पक आपर, अख फरंदी थी रहे। जीअंदी हुई अग जहते, जीअंदी हुई अग जहते, तहते मरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। चीर खाई भिचरी दिल, चीर खाई भिचरी दिल, चाह चरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। तो में वही सारी बुरिया, तो में वही सारी बुरिया, तो में तरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। तो में वही सारी बुरिया, तो में तरंदी थी रहे, सोन वरनी हाय हयाती, सोन वरनी है हयाती, किया गरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे, तू नहीं दे पक आपर, अख फरंदी थी रहे। इंतहाई खूबसूरत गजल, इंतहाई प्यारे मानू, दिलरुबा दिलबर दोस्त, महबूब शख्सियत साईं सजाद महर जो शामिल कियो से।

ऐं प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ख़ूबसूरत गीत जी एफ एम नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी प्रिय प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि जे नाम तुफ़ैल संजराणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यारो गीत हिकिड़ो तुंहिंजो ई सिरा जेको पंध थो पियो कराए अचो त गॾिजी हीउ गीत एंजॉय कयूं।

को ख़ामोशियुनि में साह विझो, को ख़ामोशियुनि में साह विझो जीअं रूपा माड़ी लोक तके, को ख़ामोशियुनि में साह विझो जीअं रूपा माड़ी लोक तके, को दोदो भड़की दाह करे हिन रिणपट खे का जाग अचे। को ख़ामोशियुनि में साह विझो सोचनि खे अड़ायो मक्तल सां, शोलनि खे समायो ॿोलीअ में, तारीख़ दरनि ते बीठी आहे के फूल विझो उन झोलीअ में।

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गड आऊं आया आबिद चौहान ऐं अवां बुधी रहिया आहियो GAFM नेटवर्क। उम्मीद त सभई महबूब अल्लाह जी अमान में पंहिंजे बचड़नि सां शादाबाद ख़ुशि हूंदव।

पंहिंजनि सां प्यारु वंडींदा हूंदो ऐं असांखे बि यादि कंदा हूंदो। कल्ह हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हाज़िर थिया आहियूं अव्हां जी ख़िदमत में। काल्ह जे न अचण जो सबबु यकीन अव्हां फ़ोन कॉल्स वसीले मूंखां ॼाणण जी लाज़मी कोशिशि कंदो, त पोइ अव्हांखे हिकु भेरो जिन दोस्तनि अॼु असांखे न्यूली ट्यून कयो आहे उन्हनि खे पंहिंजो लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348।

0: दोस्तन के वंस अगेन वरी भी मां प्रोग्राम जो पैटर्न बुधाई दोला प्रोग्राम दिल जी गाल अवासा दिल जी गालियों थिन दियुन आए शायरी वसीले डेफिनेटली शायरी उहा जुबान आहे जेका यानी कि पूरी अवां जी सजी तकरीर जो मकसद महवर जेको आ त बिन सिटन में भी जेका त उहा बयान करे छदींदी आहे। सो शायरी वसीले प्यार भी हुंदो आहे, मोहब्बत भी हुंदी आहे, शायरी वसीले पंहिंजी दिल जी ॻाल्हि आसानीअ सां पंहिंजे महबूब ताईं पहुचाए सघिजे थी ऐं असां अव्हां जे महबूबनि जूं ॻाल्हियूं पंहिंजी ज़ुबानी दोस्तनि जी शायरी शामिल करे उन्हनि जे वसीले बि पुॼाईंदा आहियूं ऐं जेको आहे त अव्हां जी शायरी ॿुधी अव्हां जी दिलि जी ॻाल्हि पूरी मुनी सिंध ताईं पहुचाईंदा आहियूं। ऐं हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां पोइ अव्हां जूं लाइव कॉलिंग असां शामिल कंदासीं प्रोग्राम में, त पोइ ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क। वापसि वरी वरंदासीं हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं।

सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे त

क्या बात है वाह सिंह वाह। पूरो बुधाईंदासीं हिकु ॿ कॉल शामिल कयूं ॿियूं उन खां पोइ जलाल जी फरमाइश आहे। पहिरियों बि तव्हां खां पहिरियों बि जलाल जी फरमाइश आई आहे हींअर।

0: बस तमाम प्यारो बुधाईंदासीं ऐं पूरो बुधाईंदासीं ठीकु आहे वॾी महिरबानी लव यू हा बिल्कुल जी दोस्तो गीत जी फरमाइश ईअं बि थींदी आहे पर असां मौके ऐं महल जी वक़्त जी नज़ाकत खे ॾिसी असांखे ईअं बि करणो पवंदो आहे त पोइ कॉलर शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां
1: वज़ाहत
0: ॾिनी मां यकीन
1: कयो सर ख़ैर आहे न
0: दुआ दुआ अलाह जा एहसान
1: मज़े में आयो
0: दुआऊं दुआऊं आवां भाइरनि
1: जूं पंहिंजो रखी साहिब कल थियो कलाम ॿुधायो न्यावीअ जो दिलि लॻाया दिलि जी गलीअ रखी साहिब बावल नगर वारा नगर पंजाबीअ में नूरजान जो ॿुधायूं था रखी साहिब नगर था चऊं बावल नगर वारे
0: जी जी इरशाद
1: तेरी मेरी गुदड़ी छोड़ रख ली भूल न जानी अनजाना या सजड़ा बोरा का तेरी मर जा मर जानी।

ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਜਾ।

0: सर सर ही क्लिपिंग बुधो वाह सर वाह लाजवाब
1: असा रफी साहब जो बावल नगर वारो
0: माँ
1: याद में ही हमने सुना
0: बस माँ भी उर्दू में कहने पहुँचाए हैं बिल्कुल
1: तो हमने सिंध से उसके लिए नजर किया रशीद भाई
0: बिल्कुल
1: बावल नगर वाले के लिए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यकीन उसे पसंद आया हुआ होगा
0: यकीनन यकीनन सर बड़ी मेहरबानी नवाजिश है शुक्रिया
1: दोस्तों को याद करना
0: याद कर ले सर याद कर ले दोस्तों
1: भुट्टा रोड से शक्कर आदर बीटी के बरकत अली भट्ट
0: जी
1: अली मोहम्मद अली अहमद अली और सर सारे दोस्तों की फरमाइश है आप गाना सुनाए आपदा पर इनका लगी वाले
0: इस वक्त जो है
1: मेहरबानी सर
0: लव यू सर थैंक यू शुक्रिया क्या कहने मंगी साहब बहुत लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन रशीद साहब अगर सुन रहे हैं हमें आज जो है कि बावल नगर से तो उन्होंने सिंध वालों का प्यार मोहब्बत देख लिया कि अगर आपको जो है कि सिंध वालों की मोहब्बत खींच रहा थी हमारे प्रोग्राम में शामिल कर दिए तो सिंध वाले आपको याद रखते हैं और बिल्कुल आप ऑलवेज जो है कि हमारे दिलों में हैं और सभी तमाम लिसनर्स जो भी हैं हमारे सिंधी उर्दू पंजाबी सिंध सुराखी जो भी हैं सुनने वाले बलोच पठान वो सभी हमारी सर आँखों पर तो बिना किसी ताखीर के बिना कहें देर जे असा जो न्यूज़ ब्रेक ते वन का अग में जलाल चांडियो जी खूबसूरत आवाज में ही गीत गजी इंजॉय कंदासे मुझा मिठा इंदे कदें मुखा पुछण जे वास्ते अचो तो गजी गीत इंजॉय क्यों

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो कीअं छो ऐं छो सडियो त आशिक वेचारो दरवाजे खां अॻिते वञी वियो मोल उथी खट ते वेही रहियो चीआं हिते नंबर दुस मूंखे पंहिंजे मुल्क वठी हलो मूंखां उहो बि कोन पुछण आयो सॼो ॾींहुं इस्पताल

आउं ते सोचा पियो जे मुझे मथा मौत आयो ता उन्हें के छा चवंदस ओ ते छा दिस।

0: जी दोस्तों वक्त थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो ऐं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक न्यूज़ ऐं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वरंदासीं ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क
1: It's

0: ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे, हथियार पिटा कंदा या न ख़बर न आहे। जेसिताईं मां आहियां, उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीकु रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख़्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रार रही रहंदी। निगरानी लाइ कमेटी बि जोड़ी रहिया आहिनि।
1: ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची तजवीज़ुनि ते अमरीकी जवाब मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान जो चवणु आहे त अब्बास अराग़ची अमरीकी जवाब खां काबीना खे आगाह कयो। अमरीकी तजवीज़ खिते में जारी जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां आहिनि।
0: सऊदी अरब जो दुश्मन पाकिस्तान जो दुश्मन आहे। हुसैन ख़िलाफ़ सऊदी अरब खे पाकिस्तान सभु वसीला फराहम कंदो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान जो दिफ़ाई सलाहियतूं वाइदे तहत सऊदी अरब लाइ मौजूदु आहिनि। सऊदी खे मदद फराहम करण वारे अज़म में का बि घटिताई नाहे, मदद लाइ तयारु आहिनि।
1: आलमी मुआदनि खे हिकु तरफ़ो ख़तम या मुअतल नथो करे सघिजे, तय थियल मुआदनि ते अमल करण बि लाज़िम हूंदो आहे। सिंतास मुआदे बाबति आलमी ट्राकड़ी अदालत बि पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी। सुबसमा वारे वज़ीर अता ताड़ जो चवणो हो त सिंतास मुआदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान सिंतास मुआदे जी तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणण लाइ तयारु आहे। सिंतास मुआदो पाकिस्ताननि जी बका जो मसइलो आहे।
0: सूबनि वारी ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾियणु घुर्जे, न ई परेशान थियणु घुर्जे। मोहसिन नक़वी जी सदर आसिफ अली ज़रदारी सां का मुलाक़ात आहे थी। मुलाक़ात वारियूं
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ जीए एफएम 94।